भाई आजकल अगर कहीं हीरोगिरी चल रही है तो वो है इंडिया के तमिलनाडु में, राइट? आपको पता है एक्टर जो है वो अब सीएम बन चुके हैं। बिल्कुल, मैं एक्टर विजय की बात कर रही हूँ। और ये कितना इंस्पायरिंग होता है यार, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक ऐसी डेजिग्नेशन तक पहुँच जाओ कि लोग आपका आदर सम्मान करें, आप एक वो कहते हैं ना रूल मेकर बन जाओ यार। सो मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। और अगर हम एक्टर विजय की बात करें तो इन्होंने एंट्री लेते ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक डिसीजन ले लिया है। और वो डिसीजन पता है क्या है कि अगर कोई मूवी नई रिलीज हुई है और पहले हफ्ते में उसके शोज जो है ना वो 4 शोज नहीं बल्कि 1 दिन के 5 शोज भी प्ले कर सकता है, राइट? अभी तक वहाँ पे ये रूल नहीं था, बट 5 शोज पर डे का रूल फॉर फर्स्ट वीक जब मूवी रिलीज होगी, ताकि उसको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का भी मौका मिल जाए, उसके अकॉर्डिंगली ही इसे अप्रूव कर दिया गया है। क्या बात है, क्या बात है भैया, अपनी इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: आंखें खुली हो या हो।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
0: वाओ मतलब सिंपली वाओ यार, मतलब जिस तरह से धीरे धीरे करके कांस फेस्टिवल के हर ज्वेलरी की डिटेल निकल कर आ रही है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है राइट। तारा सुतारिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कांस फेस्टिवल में इस बार नजर आई और उन्होंने जिस तरह से डायमंड और एमरल्ड मिक्सचर के साथ एक नेकलेस पहना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग ब्राइड्स इस डिजाइन को काफी ज्यादा प्रेफर कर सकती है राइट। तो अगर आप भी ऐसे आउट ऑफ द ड्रीम्स वाली डिजाइन ढूंढ रहे हैं तो आप पहुंच सकते हैं सिरानगुंज रोड जहां पे है जॉया लुकास जो है वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर। यहां पे आपको फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड डायमंड पोल की एंड प्रेशियस ज्वेलरी एज वेल। ये ऑफर 14 से जून तक है एंड आपको 100% डायमंड के एक्सचेंज पर वैल्यू मिल रही है, इजी पेमेंट प्लान भी मिल जाएंगे। तो आप पहुंच सकते हैं सिरानगुंज रोड। मैं आज मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान। आती हूँ मैं कुछ और भी ऐसी आए हाय फायदे वाली बातें लेकर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: वो होते हैं ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसी जो रिदम बिठा कर हम कुछ सही सही सही बोलना चाहते हैं, फिर अचानक से कुछ गलती हो जाती है। ऐसी ही हो चुकी है आजकल की फिल्में। बनते बनते बनते बिगड़ गई, फिर बनते बनते बनते बिगड़ गई, फिर होते होते होते रुक गई। ओ माय गॉड, ये लूप तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हेलो हाय, मैं आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। आई एम डेफिनेटली अक्षय कुमार, परेश रावल एंड सुनील शेट्टी स्टारर। हेरा फेरी मूवी जो है ना, पता नहीं कौन से नक्शे कदम पर शुरू हुई थी, अभी तक खत्म ही नहीं हो पा रही है। हाँ जी, परेश रावल जो है ना, वो हेरा फेरी मूवी का तीसरा पार्ट छोड़ चुके थे, ठीक है। लेकिन एनी हाउ, अक्षय कुमार के साथ और फिल्म मेकर्स के साथ डिस्कशन के बाद उनको कन्विंस कर लिया गया, ठीक, अब ये फिल्म वापस बनेगी, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन दोबारा से उन्होंने फिल्म छोड़ दी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मतलब सच क्या है, फिल्म छोड़ दी है, नहीं छोड़ दी है, चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, फिल्म छोड़ दी है, नहीं छोड़ दी है, ये छोड़ने वाले कुछ तो होगा कन्फर्म। हाँ, तो ये कन्फर्मेशन अभी तक आया नहीं है। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 40% ऑफ, 40% जॉय आलुकास,
3: 40% ऑफ, ओ माय गॉड, लेट्स गो, लेट्स गो।
4: ऑफर ऐसा कि आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। जॉय आलुकास लाया है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल, फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड, पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी, एंड 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज। Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
5: Kabhi use noor noor kehta hoon. Kabhi main.

0: रहना आंखों आंखों में ही रहना आंखों आंखों में ही रहना।
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक
2: जोश में रहो।
0: यू नो व्हाट, ठीक है, कुछ साल पहले जो फ्लेवर चाहिए था हमें, वो चाहे मैंगो फ्लेवर्ड किसी कैंडी का हो, वो चाहे आप कह सकते हैं पुरानी चाय का हो, कॉफी का हो, कपड़ों का हो, ये टेस्ट हमें पसंद है। लेकिन क्या हमें मूवीज में पुराना टेस्ट पसंद है? मतलब आप बताइए दिल पर हाथ रख के, आपको पुराने स्टाइल वाली मूवीज जब टेलीविजन पे आती है तब वो नॉस्टैल्जिक फील कराती है, या फिर वो टेस्ट वाली मूवी थिएटर्स में आती है तब नॉस्टैल्जिक फील कराती है? बताओ बताओ। हियर इज अ पॉइंट, मतलब कोई पुराने स्टाइल की मूवी पुरानी चीजों का डिस्कशन करते हुए जब टेलीविजन सेट्स पर आती है ना, वो फील, वो वाइब, वो इम्प्रेशन बहुत अलग होता है। एंड ये फिल्म मेकर्स नहीं समझ रहे हैं। सो हेलो, हाय, मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड पुरानी एनर्जी को बरकरार रखते हुए डेविड धवन मार्केट में दोबारा उतर रहे हैं। हां जी, है जवानी तो इश्क होना है, राइट? वरुण धवन यानी अपने बेटे के साथ उन्होंने मूवी तो तैयार कर ली है और 5th ऑफ जून को ये सिनेमाज में आने वाली है। बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि क्या ये पुरानी एनर्जी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हम एक टाइम पे सिर्फ एक फिल्मी कंटेंट की तरह देखते थे, रियलिटी की तरह नहीं देखते थे, इन चीजों को दोबारा से थिएटर्स में लाने से लोग खुश होंगे? हाँ हाँ हाँ, आई डाउट, बट लेट्स सी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या आता है। आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

वो कौन से लोग हैं जो कह देते हैं कि पेपराजी फोटोग्राफर्स अच्छा बिहेव करना नहीं जानते? बिकॉज आप कैसे उनसे डील कर रहे हैं ये मैटर करता है यार, बहुत मैटर करता है। मतलब एक तरफ जया बच्चन जी चिल्लाती रहती है तो पेपराजी ने उन्हें कवर करना ही छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कैटरीना कैफ एंड विकी कौशल जैसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स भी हैं कि वो लोग पैप्स को इतनी प्यार से डील करते हैं कि उन्होंने एक डिसेंसी मेंटेन करते हुए, कैटरीना जब अपने बच्चे के साथ एयरपोर्ट पहुंची थी तो उन्होंने फोटो नहीं क्लिक करी और बहुत प्यार से उन्होंने अपने बच्चे को ना पेपराजी फोटोग्राफर से मिलवाया भी, हाँ जी, और दुनिया की नजरों से दूर भी रखा। तो ये जो कामनेस है ना, ये विकी कौशल और कैटरीना के चेहरे से ही नजर आ जाती है ना। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
4: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार हम लोगों की एज कितनी ज्यादा हो गई है, हम कैसी कैसी बहकी बातें करने लगे हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो वैसा होता था। और जिस दिन आप ऐसी लाइन बोल देना, आप समझ जाना आप लाइफ को अब एक्सेप्ट कर चुके हो कि अब आगे बढ़ना पड़ेगा, पुरानी बातें थोड़ी छोड़नी पड़ेंगी। सो हेलो हाय, मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड लाइफ गोज ऑन, मतलब बाय द टाइम आपको जब लगने लगे कि आपके पेरेंट्स की एडवाइसेस ही सबसे बेस्ट एडवाइसेस है, तो आप मैच्योर हो चुके हो। बिल्कुल, एंड ऐसी ही मैच्योर एडवाइसेस करण जौहर भी दे रहे हैं। हां जी, उन्होंने बोला है कि अब वो चार्म जा चुका है, जब सलमान खान के बड़े बड़े बाल तेरे नाम मूवी वाले देखकर सब लोग बार्बर शॉप में जाकर हेयर कट करवा ले। हाँ, या फिर अनुष्का शर्मा के पेस्टल लहंगे को देखकर लोग वैसे ही अपनी शादी प्लान कर ले। अब वक्त बदल चुका है, अब फैन फॉलोइंग बदल चुकी है, अब जो एक्टर्स में भी जो बात होनी चाहिए वो ना रही। और इसी वजह से करण जौहर ने बहुत सारे एक्टर्स को ना क्या कर दिया है, अनफॉलो कर दिया है। हाँ जी, करण जौहर भी ना बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स के शिकार हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, अरे करते रहते हैं, और जितने भी एक्टर्स हैं ना उनको सुनाते रहते हैं। अब ठीक है, खाली वक्त है इनके पास। हाँ, आज इन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

सुन टका टक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? सारा अली खान ने जब बॉलीवुड में एंट्री मारी थी ना, केदारनाथ मूवी कंसीडर कर लीजिए जो उनकी पहली मूवी थी, उन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी के लिए 45 केजी रिड्यूस किया था। और उससे पहले जब इनके कॉलेज डेज थे तो ये रोज पिज्जाज ब्राउनीज खाती थी, हाय हाय हाय हाय। लेकिन अब ये एकदम बिल्कुल देसी बढ़िया घर का बना हुआ खाना खाती हैं। लेकिन जब ये बाहर जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कुजीन ढूंढती हैं कि दाल चावल मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो कभी कभी तो चलता है ना ये सब, राइट? अगर आप भी ऐसे कभी कभी कभी वाले सेलिब्रेशन पर यकीन करते हैं तो एक सेलिब्रेशन हो रहा है राफल सिटी सेंटर में। हाँ जी, शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने 25 इयर्स ऑफ फ्लेवर्स। और इस ओकेजन पर आप जो ऑर्डर करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन बहुत सारी डिशेस आपको 25 प्लस प्लस डॉलर में मिलने वाली है, जैसे कि मुर्गी टिक्का, तंदूरी चिकन, चिकन मक्खन वाला, पालक पनीर, शाही फिश अमृतसरी करी, शाही सब सिजलर। एंड ये सारी चीजें आपको मात्र 25 प्लस प्लस डॉलर में मिलेंगी on the occasion of 25th anniversary. अगर आपकी टेबल का बिल 100 प्लस प्लस डॉलर हुआ तो इस मौके का फायदा उठाइए and definitely पहुंचिए advance में reservation करके शाही महारानी रेस्टोरेंट। हाँ जी, डिटेल के लिए www.shahimaharani.com विजिट कीजिए या कॉल कीजिए 6235884। ओ आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है मेरी जान।

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: इमेजिन एक ऐसी मूवी जो रिलीज हुई थी जब मैं पैदा हुई थी। हाँ ठीक है, मैं ईयर नहीं बताऊंगी, आप मेरी एज गैस कर लेंगे, लेकिन ये मूवी थी खलनायक और अब ये रीमेक होने वाली है। सो हेलो हाय, मैं आ रही हूं मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि यार मुझे लगता है कि एक्टर्स को ना अपनी मूवीज से इतना प्यार हो जाता है कि वो अपना 100% उसको देना चाहते हैं। दैट्स वाई संजय दत्त ने खलनायक मूवी का जो राइट है वो खरीद तो लिया, अब इस मूवी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्होंने ले ली है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छे डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं और आपको मैं बता दूं एक्टर तो इन्होंने ढूंढ ही लिए हैं। हाँ जी, संजय दत्त जो है वो जैकी श्रॉफ को इस मूवी में वंस अगेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप सोचिए, जो उनका पहले रोल था ना इंस्पेक्टर राम कुमार सिन्हा का, इसी रोल को रिवाइव करके इस मूवी में सालों बाद दिखाया जाएगा। इमेजिन किसी मूवी का दूसरा पार्ट आए और उसमें पुराने टेस्ट को बरकरार रखा जाए। ओहो क्या बात है। मतलब ठीक है, एक्टर्स को अपने कॉन्टेंट से प्यार हो जाता है और अगर इसके बदले में हमें थोड़ा इंजॉयमेंट मिल जाए तो क्या ही बुरा है। हाँ चलिए, ऑन दिस नोट, एंजॉयमेंट तो आपको दिन भर मिलता है, कहाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, अब मुलाकात होगी डेफिनेटली कल। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे। शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 live par. They are fresh. They are hot.

चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Singapore, prepare for impact.
2: 3, 2, 1.
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी,
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
4: क्या
5: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाजी, क्या बात जी,
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
2: एक्साइटेड
3: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। रेडियो मस्ती 24/7
1: लाइव। हेलो सिंगापुर। हाँ, आपसे बात कर रही हूँ, और कहाँ जाओगी बात करने। चलो अब जरा कंप्यूटर की स्क्रीन से आंखें हटा दो, धूप बहुत तेज है बाहर, इट्स जस्ट टू हॉट, बहुत गर्मी है, थोड़ा चिल करो। घड़ी में सुबह के एग्जैक्ट 11 बज चुके हैं और आप मेरे साथ हैं, बिल्कुल लाइव जुड़ चुके हैं इन द शो मस्ती हैंग आउट विद योर वन एंड ओनली मुग्धा, जो कि आते हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए। आई नो आई जस्ट नो कि 9 बजे से ना ऑफिस में काम कर करके दिमाग का दही तो हो ही जाता है कि नहीं। तो चलिए एक लंबी सांस लीजिए, अपनी कॉपी का जो कप है उसका एक सिप मारो और सुनो आज पता है क्या है। आज है 3rd of June और आपको ना पूरे दिन के लिए एनर्जाइज रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। और इसीलिए मैं आपके दिमाग को ना एक झटका देने वाली हूँ। बोरिंग ज्ञान नहीं है, काम की बात, एक बहुत ही मस्त सी चीज है जो मेरे पास है आपके लिए। आज ना पूरी दुनिया में मनाते हैं ग्लोबल रनिंग डे। यस, अब आप बोलेंगे कि यार ये क्या 11 बजे धूप में कौन दौड़ने की बात ही करता है। बस देखो दौड़ना नहीं है, असल में क्या है ना, साइंस ही कहता है कि अगर आप ये 11 बजे वाले स्लगिश से टाइम पर भी ना सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी कुर्सी से उठकर घूम लेते हैं या लिफ्ट के बजाय आप स्टेयर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका ब्रेन इंस्टेंटली डोपामीन फ्लड करता है। ये ना आपके आने वाले जो कह सकते हैं कि बात के जो लंच कोमा का पहले वाला होता है ना, नींद जो आती है लंच कोमा वाली, उसको पहले ही ब्लॉक कर देता है। तो फ्री की एनर्जी जो है वो टिकट मिल जाती है आपको, उस फ्री एनर्जी टिकट का आपके पास ये रास्ता है, 5 मिनट के लिए वॉकशॉप कर लो। तो बेसिकली ग्लोबल रनिंग डे का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दौड़ने के लिए कह रही हूँ, इट्स जस्ट थोड़ा वॉक करो। यू टॉक अ लॉट, वॉक अ लिटिल, तो वॉक करो। इस ये जो भी लंच वगैरह ना, उस लंच ब्रेक पे थोड़ा पैदल चल लेना। मुझे बताना सीट से उठ के आपने अगर स्ट्रेच किया तो मजा आया कि नहीं, और कौन कौन कर रहा था ये बताना मुझे। स्ट्रेच सुन रहे आप मुग्धा को, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। जोश में रहो, ओ देखो हो गया फेर, खेल हो गया शुरू।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: अच्छा एक बात बताओ, आज सुबह सुबह जब आप MRT या बस से ऑफिस आ रहे थे तो क्या आपको थोड़ी सी ज्यादा भीड़ महसूस हो रही थी अपने आसपास? अगर हाँ

बिल्कुल सही है, ऐसा आपको लग नहीं रहा था, ऐसा है। एक बहुत ही कमाल की खबर आई है कि सिंगापुर टूरिज्म में ना एक असली एक्सप्लोजन हुआ है, बूम। सो अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट्स, पिछले साल 2025 में ना सिंगापुर ने टूरिस्ट अराइवल्स के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको तड़ा ऐसे तोड़ दिया और एक नया ही कीर्तिमान बनाया, नया इतिहास रचा। पूरी दुनिया से लोग हमारे इस छोटे से आइलैंड पर आए घूमने के लिए और इतना ज्यादा मतलब पसंद आ गया उनको हमारा आइलैंड की, पागल हो रहे हैं घूमने के लिए, से कतारें लग रही है कि हमको सिंगापुर जाना है, सिंगापुर जाना है। अब आप बोलेंगे यार इसमें हमारा क्या फायदा, अरे भीड़ बढ़ती जा रही है। ओ हेलो, जब पूरी दुनिया के लोग हमारे मरीना बे, सेंटोसा, लोकल हॉकर सेंटर्स में आएंगे और वहां के खाने के लिए एकदम एक्सप्लोजन हो जाएंगे वहां पे और तरस रहे हैं वहां के खाने के लिए, तो किसका फायदा है? आप ये सोचो, एक तो आ रहे हैं आपके कंट्री का, आपके आइलैंड का टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, सेकेंडली आप तो उसी जगह पे रह रहे हो जिसका लुत्फ उठाने के लिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, मतलब आप जन्नत में हो और आप कह रहे हो कि क्या फायदा। नहीं नहीं नहीं, देखो जन्नत में रहना और जन्नत में सबको आने का मौका मिलना तो चाहिए, है ना? तो आप ये सोचो, प्राउड फील करो यार, कैसी बातें कर रहे हो। और कोई भी कंट्री अगर टूरिस्ट बेस है तो उसका टूरिज्म ही तो उसका पावर है, उसका बैकअप पावर है टूरिज्म। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके सिंगापुर में इतने लोग आ रहे हैं। हाँ, बस ये है कि जो लोग आ रहे हैं थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करके रखना, देखो हर जगह जरूरी है। हम किसी मेहमान के घर जाते हैं तो वहां पे भी थोड़ा सा अच्छे से रहते हैं ना, जिंदगी विंदगी नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से रहना है, भी पोलाइट, आप उनके साथ रहिए पोलाइट, वो आपके साथ पोलाइट रहे, बैलेंस बने रहना चाहिए। एंड देन वी हैव आवर चांगी एयरपोर्ट, यार पूरी दुनिया में और कोई कहीं जाए चना जाए एयरपोर्ट पे तो रुक के जरूर ही जाते हैं। सो मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ भाई।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: सिंगापुर में ना आजकल एक बहुत ही डेंजरस गेम चल रहा है। कुछ लोग जिम नहीं जा रहे, कुछ कार्डियो नहीं कर रहे, बस एक ट्री के नीचे खड़े होके इंतजार कर रहे, बिकॉज लोरोंग के ड्यूरियन ट्रीज ना ऑफिशियली ब्लूम कर रहे हैं, इनफैक्ट कर चुके हैं, और पूरे एरिया में ड्यूरियन हंटर्स जो है ना इमोशनली एक्टिव हो चुके हैं। हम सबको ये दिखाई दे रहा है कि इस साल भी ट्रीज प्रॉपर ब्लूम हुए हैं और बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, तो टाउन काउंसिल ने स्पेशली रेजिडेंट्स को ना वार्निंग दी है कि फॉलन ड्यूरियंस को आप पिक नहीं करोगे। मतलब पूरी खबर जो है वो एक तरह से देखा जाए तो हमारे मैंगो सीजन से मिलती जुलती है। पब्लिक एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई है कि अथॉरिटीज को ऑफिशियली बोलना पड़ा, डोंट प्लक डोंट कलेक्ट। आपको पता है अगर आप कोई भी गिरा हुआ ड्यूरियन उठाकर के अपने घर ले जाते हो सिंगापुर में, इट्स इलीगल। फाइन है भाई साहब। स्ट्रिक्ट रूल्स के मुताबिक पब्लिक लैंड्स पर लगे जो पेड़ हैं उनमें से ड्यूरियन तोड़ना या नीचे गिरे हुए फ्रूट्स को उठाना कलेक्ट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यस, अगर आप ऐसा करते हैं और या करते हुए पकड़े गए, मतलब अपने घर के आसपास के 500 ट्रीज से, तो आपको $5,000 तक का भारी भरकम फाइन देना पड़ सकता है। और अगर आपने किसी नेचर रिजर्व या नेशनल पार्क से ऐसा फ्रूट उठाया है तो आपको $50,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। रूल्स एकदम साफ है।

0: बिल्डिंग्स पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और उन्हें कलेक्ट करने के लिए एन पार्क से एक्सप्लिसिट परमिशन चाहिए होती है। बताओ जरा, न आम उठा सकते हैं न ड्यूरियंस। वैसे ये इसलिए भी है कि लोग चलते फिरते यहाँ वहां जा रहे हैं और किसी के सर पे कुछ टपक गया और चोट लग गई तो उनको भी दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, इसलिए भी उनके आसपास जो है पेड़ों के बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि 100 मीटर के आसपास भी कोई ना दिखाई दे।
1: पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के।
0: सो बेसिकली रूल्स आर रूल्स भैया हमारी कंट्री में, समझ रहे हो ना।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
3: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज सिंगापुर स्मार्टेस्ट गेम शो वेयर नॉलेज विन्स

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: अच्छा सुनो, बहुत हो गई यहाँ वहाँ की बातें, ये मत तोड़ो, ये मत उठाओ, ये मत ले जाओ, ये मत छुओ। मैं फिलहाल आपको एक ऐसी जगह भेज रही हूँ जिसको देखने, जानने और सुनने के बाद आप कहेंगे ये हुई ना बात। इसको कहते हैं ऑफर्स। ड्यूरियन तो आप छू नहीं सकते, मैंगो आप उठा नहीं सकते, पर आप जा सकते हैं जोया लुकास के शोरूम। वहां पे आपको कोई कुछ भी देखने, छूने और पैसे देकर उठाने से मना नहीं करेगा एक्चुअली, बिकॉज जोया लुकास जो है वो आपको सबसे बड़ी ज्वेलरी सेल आपके लिए लेकर के आया है, द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल। भाई आने वाले शादी सीजन है, फेस्टिवल्स हैं, ओकेजंस हैं, या भी अगर मन किया तो भी यार जाकर ले तो सकते हो ना अपने लिए। और ये जो मौका है ये बिल्कुल खोने का नहीं है। आपको मिल रहा है एकदम इनक्रेडिबल फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड एंड पोल की, या फिर कोई भी प्रेशियस ज्वेलरी। और साथ में, मतलब 40% ऑफ तो है, साथ में सुनो 100% का डायमंड एक्सचेंज है। यस, 100% डायमंड एक्सचेंज वैल्यू है, एकदम मक्खन जैसे इजी पेमेंट आपके ऑप्शंस हैं, आपके पास प्लान्स भी हैं उनके पास। नाउ दिस ऑफर 14 जून 2026 तक वैलिड है, तो आप इनके नजदीकी शोरूम जाएं और इनका जो ये ऑफर है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीबॉडी, शो के दूसरे आवर में आ चुके हैं। सो बेसिकली दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपके अपने मुग्धा। शो का सेकेंड आवर इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, बी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कोई सा भी वुड हो, मैं उसको एंटरटेनिंग बना देती हूँ। वक्त हो चुका है बॉलीवुड अपडेट का। मेरे पास एक ऐसी खबर है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आपको लगता है कि आपने OTT पर सारे सस्पेंस और थ्रिलर्स जो हैं वो देख लिए, थम जाओ यार, क्योंकि Amazon Prime पर एक नई सीरीज आ रही है जिसका नाम है राख, और इसका ट्रेलर जो है ना यार, दिमाग हिला दिया इसने। ये जो कहानी है देखा जाए तो ये आपको ले जाती है सीधा 1970s में। उस वक्त इंडिया में दिल्ली के ना जो पुराने अंधेरे क्राइम भरे जो दौर हैं उसमें ही आपको लेकर जाती है। एंड बहुत ही नॉर्मल सी दोस्ती जो है कैसे एक बहुत ही भयानक क्राइम और बदले की आग में बदल जाएगी, आप ये देखोगे। कलाकार इसमें बहुत कमाल के हैं, एक्टर्स बहुत कमाल के हैं। गुड्डू भैया दिखेंगे आपको इसमें, सोनाली बेंद्रे हैं, एंड मेनी अदर फेसेस। इसमें हमारे प्यारे धुरंधर के एक बहुत ही कमाल के कलाकार है, नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको। आप जब इसका ट्रेलर देखोगे तो आप शॉक रहोगे, ये भी है राइट। ऐसे ऐसे फेसेस आपको दिखाई देंगे कि आपको लगेगा यार ये तो देखनी है। रेट्रो वाइब है, बेल बॉटम्स का दौर है, एंड सॉलिड रॉ एक्टिंग की भरमार है। सो अगर आपको ऐसी डार्क रेट्रो क्राइम सस्पेंस वाली जो OTT सीरीज या फिल्म्स पसंद है, दिस वन इज फॉर यू।
2: दूर ही रहना मेरी जान, यू नो दे कॉल मी किलर हसीना,
1: किलर हसीना। अभी तो ट्रेलर आया है, नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, बॉलीवुड आज चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये जो खबर है ये हॉलीवुड और बॉलीवुड का मिक्स हो गई है। गर्मा गर्म मजेदार सी खबर है ये। हमें हम सब जानते हैं, हमारी प्यारी परदेश गर्ल एक्चुअली महिमा चौधरी, अभी खबरों में उनकी बेटी है बहुत ज्यादा, आर्याना है ना, उनकी बेटी आर्याना की तस्वीरें जो है वो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है। आई सपोज मेनी ऑफ यू नो द रीजन कि क्यों वायरल हो रही है। जिनको नहीं पता है मैं आपको बताती हूँ। उनकी शक्ल ना, आर्याना की शक्ल हॉलीवुड की एक्ट्रेस मीका से मिलती क्या है, शी इज लाइक अ लुकल लाइक। यस, ये वही है जो हमारी सुपर फेमस हॉलीवुड की जो वेब सीरीज है ऑफ कैंपस इन्हें शायद उसमें आई है, और वहां देख के हर कोई सोचता रह गया यार ये तो महिमा चौधरी की बेटी है। फिर बहुत रिसर्च करी लोगों ने, फाइनली पता लगा नहीं है वो नहीं है, पर दी बोथ आर लाइक ट्विन्स यार, बिल्कुल। फिर महिमा से इस बारे में पूछा गया, बड़ा क्यूट जवाब था। वो कहती देखो भाई, मुझे तो लगा कि मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरी जैसी है, पर अगर लोग उसे किसी हॉलीवुड स्टार से कंपेयर कर रहे हैं तो क्यों मना करूं, इट्स ओके, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। पर ये सच में ट्विन्स लगती है भाई। अगर आपने नहीं देखा है ना ऑफ कैंपस, देखना, आर्याना को देखना और मीका को देखना। अब इन दोनों को किसी वेब सीरीज में कास्ट करने वाली बात आ जाए तो मजा आ जाए, लाइक दे गोना प्ले लाइक ट्विन्स और समथिंग। तो आर्याना तो बिना किसी मेहनत के सीधे हॉलीवुड लैंड करेगी यार, एंड दे बोथ आर वेरी क्यूट। आर्याना, दिस इज लाइक अ गोल्डन चांस यार, ट्राई कर सकते हो, है ना।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live.
1: Oh my gosh, भूख लग गई यार बातें करते करते। आपके पेट में चूहे दौड़ रहे कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे पेट में तो बहुत चूहे दौड़ रहे। जब मेरे पेट में चूहे दौड़ते हैं और मेरे सामने से कोई खाने की बात आ जाती है तो मुझे एक ही चीज याद आती है, दैट इज शाही महारानी एट ट्रैवल सिटी सेंटर। यार 25 साल हो गए उनको, है ना, मतलब वो रॉयल फ्लेवर लजीज ट्रीट्स हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, वो हर फेस्टिवल हर ओकेजन और हमारी हर छोटी बड़ी भूख के वक्त पे। एंड नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग द 25 इयर्स, लाइक क्वार्टर सेंचुरी है बॉस। और इस बड़े से माइलस्टोन को ना सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने हमारे लिए, हम सारे सिंगापुरियंस के लिए बहुत ही खास ऑफर जो है वो रखा है। यूजुअली जो उनके आइकॉनिक सिग्नेचर डिशेस हैं वो $32 या उससे ज्यादा की ही मिलती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दे आर लाइक वेरी यमी। लेकिन 25वीं सालगिरह है तो हम सबके साथ मिलकर मनानी है, और हमारे लिए स्पेशली, हम सबके लिए उस प्राइस को घटा करके जस्ट $25 कर दिया गया है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपका टेबल का मिनिमम स्पेंड $100 आता है तो ये सारे डिशेस आपके लिए उसी प्राइस पे आएंगे जो उन्होंने आपको ऑफर प्राइस दिया है। एंड दीज डिशेस आर लाइक, क्योंकि छोटी मोटी ऐसे स्टार्टर्स नहीं है, दे आर द क्लासिक्स जैसे कि चिकन मक्खन वाला, तंदूरी चिकन, पालक पनीर, एंड देन कमिंग टू वेज जैसे कि पालक पनीर मैंने बोला, शाही फिश, अमृतसरी करी, ये सब आपको 25 प्लस सिंगापुर डॉलर्स में मिल सकती है अगर आपका पूरा टेबल का एक मिनिमम स्पेंड 100 प्लस सिंगापुर डॉलर्स है तो। नाउ दिस लजीज ऑफर इज वैलिड टिल 30th June, और ये सिर्फ डाइन इन के लिए है, है ना, तो देर मत करो, इसी बहाने एक फैमिली आउटिंग प्लान करो, जाओ और मजे से पेट भर के यम्मी खाना खाओ एंड शाही महारानी के इस रॉयल शाही ऑफर का लुत्फ उठाओ, समझे।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: Singapore, bored ho? Game khelni hai? Challenge accept karoge? Excited?
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी,
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
5: क्या जी?
6: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
5: वाजी, क्या बात जी.
6: Order today from GG Mart, your personal grocer.

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वाह, बॉलीवुड के राग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एकदम ताजा ताजा रोमांस की। अगर आपको आशिकी 2 और एक विलेन का वो सुपर हिट रोमांस और उसके गाने याद हैं, इंटेंसिटी याद है, स्टोरी से आपको ऐसी प्यार है, तो खुश रहिए, क्योंकि हमारे प्यारे डायरेक्टर मोहित सूरी जो हैं वो अपनी अगली बड़ी रोमांटिक फिल्म लेकर आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। इस बार ना सबसे बड़ा झटका पता है क्या है, इस फिल्म में कोई पुराने घिसे पिटे चेहरे नहीं है, एकदम फ्रेश जोड़ी है। चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे और गॉर्जियस अनीत एक साथ मिलकर के वो मजेदार सा कॉम्बो क्रिएट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट और यशराज फिल्म्स जो हैं वो इसको और ज्यादा बड़ा बना रहे हैं। दिस नेम इज गोना बी लाइक बिग बिग एंड बिगर। हाँ, मुझे पता है कि आन और अनीत जो हैं वो ऑलरेडी एक फिल्म में आ चुके, पर मतलब घिसे पिटे इन द सेंस कोई पुराने ऐसे चेहरे नहीं उठा रहे। ये जो जोड़ी है वैसे भी रोमांटिक फिल्म के थ्रू ही लोगों के दिलों में जाके बसी थी, तो मोहित सूरी के साथ इनका एक और जो कमबैक कॉम्बो है वो तो बनता ही है। अब देखना कि ये दोनों मिलके वापस से कितनी रॉ केमिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज प्यार मोहब्बत में केमिस्ट्री तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कितनी रॉ केमिस्ट्री क्रिएट करेंगे ये तो आने के बाद ही पता लगेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। आपको ऐसे हल्के फुल्के से काम चलेगा नहीं, हम ऑडियंस जो है ना हमारे लेवल्स अब हाई हो चुके हैं हर मामले।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग?
2: Oops, you don't know me? Okay, कोई बात नहीं, मैं हूँ मुग्धा तिरकिथा। Yes,
1: this is me आरजे मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। शो का आखिरी आवर भले शुरू हो चुका है पर कोई बात नहीं, वो कहावत सुनिए ना, देर आए दुरुस्त आए। आप रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर थोड़ा देर से जरूर आए पर बिल्कुल दुरुस्त आए हैं। ये वो शो है जहाँ पे दो घंटे बीतने के बाद भी आपको लगता है वाह जो आए तो ही बेहतर। तो फिलहाल शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में आप हैं और ये जो आर है ना, ये अमेजिंग बातों का आर है। आपको पता है दुनिया में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। मैंगो से मेरी बात होने वाली है, मैंगो के बारे में बात है। मैंगो से बहुत सी बात है, जैसे मैंगो से सिंगापुर में हम यहाँ पे मैंगो रूल है कि आप गिरा हुआ आम नहीं उठा सकते, आप तो ड्यूडेंट भी नहीं उठा सकते। ऐसा ही कुछ बहुत ही क्रेजी है जो कि हुआ है सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका। वहां पे एक पार्क में किसी ने तो फ्री इंडियन मैंगो पार्टी रख दी। जिसने आम नहीं खाए वो क्या जाने, लेकिन जिसने आम चख लिया लहू मुंह लग गया ऐसा। और वैसे भी देखो हर कोई ना कुछ नया ट्राई करना चाहता है। हजारों गोरे और जो देसी हैं वहां भीड़ टूट पड़ी भाई साहब रसीले अल्फांसोस के लिए। केसर आम, आम ही आम, आम आम आम, लोग आम खाने के लिए आम आम आम कर रहे थे। लंबी लाइंस थी, खड़े होकर के आम के मजे ले रहे। और वहां का जो माहौल है ऐसा लग रहा था कोई मैंगो कार्निवल, कोई मैंगो फेस्टिवल चल रहा है। जिसने पहली बार आम खाया होगा ना उसके तो जैसे ब्रह्मांड के साक्षात दर्शन हुए होंगे, चक्षु खुल गए होंगे, द्वार खुल गए होंगे दिमाग के। बस उसने एक बार खाया, खाते जाओ आम के गुण गाते जाओ वाली बात होगी, है ना, इनक्रेडिबल मैंगो वाइब। आम चीज ही ऐसी है, इसीलिए अगर आप भी अभी भी आम खाना चाहते हैं तो ggmartonline.com आप ही के लिए तो बैठा है। वहां पे आपको लाइन लगानी पड़ती सैन फ्रांसिस्को में, यहाँ पे नहीं लगानी है, घर बैठ के आम ऑर्डर करो भाई। ggmartonline.com की वेबसाइट पे जाओ, आमों का ऑर्डर प्लेस करो, लाइन मत लगाओ। आपको वहां पे असली अल्फांसोस मिलेंगे, चाहे वो रत्नागिरी के हो चाहे वो देवगढ़ के हो। आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, डब्बा आपके घर आ जाएगा। $70 से ऊपर का ऑर्डर प्लेस करोगे तो फ्री में पाओगे, समझे वत्स। इतना बोलने के बाद भी तो सुन रही हूँ यार, आप लोग आम आम करते रहते हो, बता तो रही हूँ। और अगर आपने जीजी मार्ट की वेबसाइट पर जाके सारा सामान का ऑर्डर प्लेस किया और चेकआउट करते वक्त न्यू 10 कोड इस्तेमाल कर लिया, 10% का ऑफ। यस, और बाकी है मेरे दोस्त, अगर आपने ggmartonline.com के वेबसाइट पर रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट हमारे स्टूडियो के नंबर 9151896 पर भेज दिया, और भी ऑफर्स है भाई, समझे। तो वहां तो लाइन में लग के आम ले रहे थे, या तो लाइन में भी नहीं लगोगे, आम भी ले लोगे और ऑफर्स भी ले लोगे। देखा, तभी मैंने कहा था बिल्कुल सही आर में आए, देर आए दुरुस्त आए।

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: अच्छा एक बात बताइए, एक ऐसी कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं जो आपके इस पूरे वर्किंग माहौल के बीच में आपका दिल पिघला दे, तो सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ये गाने हर जनरेशन पे नहीं चलते। इंटरनेट पे एक वीडियो है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसको देख कर ना सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। द स्टोरी इज अबाउट एन 87 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर, एक प्यारी सी दादी माँ, इंडिया की कहानी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी समंदर नहीं देखा था। उनका बस एक छोटा सा एक सपना था कि वो अपनी जिंदगी में ना एक बार बीच पर जाएं और लहरों को ना ऐसे छू के देखें। हाय, आई कैन जस्ट फील द एक्साइटमेंट। और पता है क्या, उनकी फैमिली ने ना उनके इस सपने को पूरा करने के लिए इतना प्यारा जेस्चर दिखाया कि मैं क्या ही बताऊं। उन्हें व्हील चेयर पर बिठा के सीधा बीच पर लेकर के गए। उस वीडियो में ना जब उनके पैरों को समंदर छूता है तो ऐसा लगता है जैसे उफ, मतलब आप देखोगे और आप महसूस करोगे, मैं बता नहीं सकती, सुकून, मुस्कान, हाय हाय हाय, पूरे इंटरनेट का दिल जीत लिया इसे एक स्माइल ने। पीपल आर क्राइंग व्हेन दे आर वॉचिंग इट, क्योंकि हर एक की लाइफ का कोई ना कोई ऐसा सपना है जो अभी तक अनछुआ है और पूरा हुआ नहीं है, और हर कोई इसको देख के उसे रिलेट कर रहा है और उस इंतजार में कि कब कब वो वक्त आएगा जब मेरा सपना पूरा होगा, है ना। देखिए, आपके घर में जरूरी नहीं कोई दादी नानी हो तो ही पूरा करे, कोई भी, आपके मॉम डैडी, इवन आपके बच्चे, अगर अभी अभी कोई सपना है तो उसको पूरा करते करते उनकी जिंदगी के 85-90 साल मत बिता दीजिए। उनके सपने को जितना जल्दी हो सके पूरा करिए, ताकि वो एक और सपना देखें, सपने पूरे करें और एक और सपना देखें। लेट देम जस्ट बिल्ड अ हाउस ऑफ ड्रीम्स, और वो टिक मार्क लगाते जाएंगे, सपना पूरा, ये सपना पूरा। खैर, उनका जो ये सपना पूरा हुआ है, ओह माय गॉड, ऐसा लगा जैसे मेरा सपना पूरा हो गया। दिस सच अ स्वीट वीडियो, इंटरनेट पर देखना। देखो, चेहरे पे स्माइल अभी तक है बरकरार, उसे एक स्माइल को देखने के बाद समझ सकते हैं आप। नहीं समझ रहे मत समझो, जाओ गाना सुनाओ।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, hi, welcome back.
2: जी, मैं हूँ मुग्धा आपके साथ। और एक ऐसी धांसू कहानी सामने आई है, धुरंधर के बाद एक और धांसू कहानी है, जिसको देखकर ना आपका जो आपका सीना है वो गर्व से ऐसे चौड़ा हो जाएगा। प्री वेडिंग शूट, नॉर्मल सी बात है, क्या है? प्री वेडिंग शूट है, क्या ही कर लेंगे। एक प्री वेडिंग शूट में क्या ही हो जाएगा, गाउन्स, नॉर्मल कपड़े, साड़ी वाड़ी। लेकिन पेरिस में ना हमारे एक एनआरआई बहन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी, उन्होंने विंटर गियर को मारे ऐसे डिशकियां गोली और सीधा एक शानदार भारी भरकम लहंगा पहन के स्नो स्लोप्स पे स्कीइंग करने निकल पड़ी। स्कीइंग करनी है वो लहंगा पहन के, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। नो, पूरे 3 घंटे तक उन्होंने उस ठंड में लहंगा पहन कर मक्खन जैसे स्कीइंग करी है। और एक बड़ी प्यारी सी बात इन्होंने जो है वो शेयर करी है, जिसका जिक्र करना मुझे लगता है कि बनता है, बहुत जरूरी है। वो जहां भी सर्फिंग करने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाती थी, हमेशा ना वो अकेली ब्राउन लड़की होती थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट की जाए जो उन्होंने उन्हें बचपन में ना तो रिकग्निशन मिली उस चीज को, और बचपन में वो कर नहीं पाई। अपने इंडियन रूट्स को इतने प्राउड तरीके से एम्ब्रेस करना, और उन्होंने किया। इस वीडियो ने पूरे डायस्पोरा का ना दिल जीत रखा है। ये होता है असली कॉन्फिडेंस और स्वैग। जैसे अगर आपको मौका मिले तो आप सिंगापुर के इतने बड़े टिकट वाले स्पॉट्स पर ऐसा कौन सा देसी अटायर पहन के जाएंगे, घूमना पसंद करेंगे?

सब मेगा प्लेटफॉर्म, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या ऐसा है जो आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि दिस इज मी एंड माई रूट्स, मुझे बताना, ठीक है?

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: चलो बॉस, वक्त हो चुका है शो को टना बाय बाय कहने का, पर जाने से पहले उन सभी के लिए बहुत ही जरूरी जरूरी सूचना, खास बात उनके लिए जो रोज मुझे इस माइक पर सुनते हैं और सोचते हैं यार मुझे भी आरजे बनना है, यार मुझे क्या, जिस भी आरजे को सुनते हैं उसको सुन के यार मैं इससे भी अच्छा बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ यार, मैं ऐसे तो बोल ही सकती हूँ, ऐसा आता है दिमाग में, आई नो आपका ये सपना सच हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि द आरजे अकेडमी ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क, उनके एडमिशन ओपन है। यस, योर वॉइस, योर स्टेज, योर फ्यूचर, आपके हाथ में तीनों चीजें हम सिखा देंगे। एक्चुअली बहुत ही मस्त हाइब्रिड मॉडल है, यानी आपको ऑनलाइन के साथ साथ में स्टूडियो एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हर लेवल के लिए पूरे 12 आवर्स की ट्रेनिंग है, बिगिनर से लेके एडवांस तक की। सिलेबस है और वो भी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इंडिविजुअल फोकस्ड है। तो अगर आपकी उम्र 14 साल या उससे ज्यादा है तो आपको बस एक काम करना है, info@radiomasti.com.sg पर अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाना और उसके लिए एक इंट्रो ईमेल करना होगा आपको। आप अपना इंट्रो हमें ईमेल करो एंड वी विल सेंड यू एन एप्लीकेशन फॉर्म। और अपनी आवाज को अपना कॉन्फिडेंस बनाइए, इम्पैक्ट डालिए उस पे और क्या पता आपका करियर इधर ही लिखा हो। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपको एक लाइव शो होस्ट करने का मौका मिलेगा इस स्टूडियो से, समझे? चलिए इसी प्यार भरी खबर के साथ आपकी आरजे दोस्त आपसे लेती है विदा, कल फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे ना, बिल्कुल कल मिलेंगे इसी शो में, सेम टाइम पर, नहीं सेम टाइम में मिलेंगे क्या, नहीं क्या पता कब मिले, यू नेवर नो, शो वही रहेगा मस्ती हैंगआउट। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।

0: पर्चे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
2: They are fresh. They are

0: charts to ruling the countdown. Yeah, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: अर्जुन आएंगे
2: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
4: एवरी वॉइस बिगिंस विद अ ड्रीम, अ नोट दैट डेयर्स टू फ्लाई फ्रॉम सिंगापुर टू द वर्ल्ड। म्यूजिक बियॉन्ड बाउंड्रीज सीजन 4। Watch Music Beyond Boundaries only on Musti AVI, powered by Musti Media Network Singapore. For show timing and more, stay tuned to Radio Musti 24/7 Live. One world, one sound, one love. Music Beyond Boundaries, Beyond Borders, Beyond Time.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
2: Check it out.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
5: Monday blues? No, no, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network, Singapore.

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: DJ.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट, तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows, another day, another time, for your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: मत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

पक्षी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।

0: ना पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.

हाल चाल की भाई। यस बहुत ही बुरे हाल चाल है। आज सुबह से मैं एक तरह के वॉर जोन में जो है लगी हुई हूँ। एंड इट हैज बीन लाइक जस्ट क्रेजी। इट्स आई कैन नॉट टेल यू हाउ क्रेजी इज इट। सो यहाँ बस अपना

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Singapore, bored ho? Game khelni hai? Challenge accept karoge? Excited?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: 40% off, 40% joy, Lucas.
4: 40% off? Oh my God! Let's go!
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
6: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
7: 5:00 हो चुके हैं 18 मिनट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल जुड़ी हुई है एंड यहाँ पर चल रहा है मिड वीक ब्लूज जो किसी को भी नहीं है सबके लिए ना एकदम हफ्ता छोटू सा हो रखा है ना आई नो स्माइल देखो कितनी बड़ी आ गई बट ये जो खबर है ना मैं कल देने वाली थी मस्ती 90s मिक्सटेप में बट मुझसे रुका नहीं जा रहा था. नाउ यू रिमेम्बर द मूवी गुप्त Remember? भाई गुप्त मूवी में बॉबी देओल सडनली ना ऑल दीज एक्टर्स कम अप विद दीज कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था तो अपेरेंटली मैं फुल ऑन गॉसिप मोड में हूँ. सो अपेरेंटली मनीषा कोइराला जो है ड्यूरिंग वन रोमांटिक सीन उन्होंने बस सीन देने से पहले शॉट देने से पहले प्याज काफी सारा खा लिया था एंड Now, in some interview, jokingly, हमारे बॉबी पाजी is saying कि I was like so uncomfortable and मेरे से तो romance निकल ही नहीं रहा था क्योंकि सिर्फ प्याज का smell निकल रहा था and I was just not able to do it. In fact, बॉबी देओल ने ना उन्होंने अलग से भी बताने की कोशिश की उनको उनके आसपास you know, he kind of dropped hints and all, but of course, nobody got it. I swear, these things happen in these kind of shooting situations as well. So, well, anyways, हम तो गाने वाने सुनते हैं, हमें तो gossip से मतलब है ना? हम सुनेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे on Radio Masti 24/7 Live. Good evening.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: पूरी दुनिया एक तरफ और कंगना रनौत की सलाह जो है वो एक तरफ. मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, भाई कितना भी तीखा बोलती हो लड़की, लेकिन कभी कभी ऐसा सच बोल के निकल जाती है ना कि मजे ही आ जाते हैं. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप हो मिडवीक ब्लूज पर. कोई ब्लूज नहीं है किसी के पास. हफ्ता जो है इतना छोटा फील हो रहा है कि सबने कहा है कि कौन सा ब्लूज, हम कह रहे हैं कौन सी छुट्टी. 5:35 जो हो चुके हैं यहाँ पे, मैं बताती हूँ कि ये जो रीसेंट रणवीर सिंह के आसपास चल रही है controversy with him getting banned and his exit from Dawn 3 and all those things which has been happening. So bhai, recently Kangana Ranaut ek press conference mein nazar aayi and she is into sarees now, like, and she looks amazingly beautiful. I have to give that to her. Okay, to unse pucha gaya ki aapko kya lagta hai, to itni seedhe ekdam direct bola ki jab aap success ki seedhi pe upar chadh rahe hote ho na, to things become difficult for you. Aapke dost kam hote jate hain aur aapke dushman aur aapko wahan pe nahi pahunchne dena chahte wale log zyada ho jate hain. To matlab agar unke sath is time pe is tarah se ho raha hai aur un pe ban lagaya ja raha hai jo ek time pe mujh pe bhi lagaya gaya tha, कितनी सारी कोशिशें कर ली थी, which means that he is successful, which means that it is working. And I was like, yo, I mean, seriously, मतलब जो बात है तो है. And ये बात तो मैं पहले से ही बोल रही थी कि there are a lot of people and this industry is like that, right? एकदम भूल भुलैया के जैसी है ये industry. आपको कब पता नहीं कब क्या कुछ होकर निकल जाता है. So well, kudos to her to saying something like that and calling that out. But let's see. क्या होता है. अपेरेंटली रणवीर सिंह ने उल्टा जो है उनको भी सू कर दिया है, पॉइंट्स वालों को, कि भैया तुमको कोई मतलब था नहीं लेकिन तुम फिर इस सिचुएशन में आ गए हो तो आओ खेलते हैं. Let's see what happens. Let's see. This is getting interesting and more interesting by the day. Radio Masti 24/7 Live पर हम तो रखेंगे आपको हमेशा अपडेटेड.

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
4: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: The insanity I have been going through this morning, I cannot tell you, but I have to tell you because it is the news is way too good. Radio Masti 24/7 live antara ke saath 5:00 ho chuke hain 51 minutes. Bhai, aapki antara ne badi hi mehnat se has survived the war of a fandom. Okay, you all know that I was eyeing for BTS, जो कि K-pop group है, जो Singapore में December में उनके 4 shows होने वाले हैं, concerts होने वाले हैं, and I was telling you that I will be, of course, I have to go. मतलब इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. So today जो है उन लोगों का pre-sales खुला हुआ था. And this pre-sales is particularly for the fandom only. So, क्या करते हैं ये लोग कि जो fandom है BTS की, it's called ARMY, and उनके लिए वो पहले tickets खोलते हैं, and then उसके बाद general public के लिए जो है tickets खोली जाती है, which is most of the time general तक के लिए tickets बचती ही नहीं है, because the fandom in itself, it's like yeah, they just take everything. So yeah, I was in that war zone since this morning, and I. अब आप, मैंने इतनी बात कह दी है तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ. यस यस, आई कैन नॉट, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी जोर से चीखना चाहती हूँ, मैं कितनी जोर से चिल्लाना चाहती हूँ खुशी के मारे और नाचना चाहती हूँ, बट देन आई कैन जस्ट, मैं कैसे सर्वाइव करूंगी दिसंबर तक इस इंतजार में, बस वही है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ प्रेप्स नाउ टू डू, मतलब मेरा जो माइंड है वो अपने अगले सेट अगले चीजों पे जा चुका है. दैट्स यू नो व्हाट आई एम गोना वेयर, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. इट्स इनसेन गाइस, आई डिड इट, एंड इट्स द सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर दिस इज सो हाई दैट आई जस्ट, यहाँ मुझे लगा कि सबसे पहले इसकी खुशी जो है ना मुझे आपके साथ बांटनी है, एंड यू आर द फर्स्ट वन टू एक्चुअली नो दैट यस, आपकी अंतरा इज गोइंग टू वॉच द सेवन बॉयज अपनी आंखों से. या स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर
1: कॉन्सर्ट टिकट्स के वॉर में जीत के निकलने का खुशी, आप क्या समझोगे? जो निकल के आया है खून, इस खून खराबे से उससे पूछोगी भाई क्या ही फीलिंग आ रही है फिलहाल मुझे. 6:00 हो चुके हैं, 4 मिनट. गुड इवनिंग, नमस्ते. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं हूं अंतरा आपके साथ यहाँ पर. ब्लूज, हेलो, विच ब्लूज? द ओनली कलर राइट नाउ आई नो इज पर्पल. Yes, it's the BTS color, purple, because I'm going to see them. And okay. Enough with it, Antara. Calm down. But I cannot. It is just अलग level की खुशी. But खुशी के साथ साथ काम करते रहना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके सैलरी आती है, वो जो गई है इसमें बहुत सारी. या उसके लिए और काम करते रहना पड़ेगा, और अच्छा काम करते रहना पड़ेगा. But well, coming to Singapore, और Singapore का weather, which is going to be warm and humid. रात के time में, the first 2 weeks of June, that's what the meteorological department जो है उनका forecast कुछ ऐसा कहता है. कह रहे हैं Mercury जो है में hit 35 degrees on some days, which means that yeah. वैसे हम इतने सालों से रहकर एक्चुअली में यूज टू हो चुका है, हमें पता है, बट गर्मी कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई है. Just saying. So late morning and early afternoon के showers जो है वो कुछ दिनों में हमको बिल्कुल नजर आएंगे, but the nights are going to be warmer for the first half of the June. So well, that was that. भाई मौसम का कुछ ऐसा ही हाल है फिलहाल. मेरे लिए मौसम इज लाइक बहार. अगर सपना आंटी के रेट्रो लैंग्वेज में बोलूं तो बिल्कुल बहार और फूल बरसा हुआ वाला, और अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज exactly like the song coming up next. It's my favorite song, you know, and it's my gym song, but it just gives me immense happiness whenever I play it. So here we go. And yes, come back and we will also let you know ki kya ye jo ek lion chal raha hai, kya chal raha hai, kya hone wala hai. Yes, batayenge. Dhairya dharo. Good evening.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffles City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
8: कि आपने कुछ ऐसा कुछ गेम खेला हो जहां पर आपकी जनरल नॉलेज या फिर यू नो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आप कितनी जल्दी किसी चीज का जवाब देते हो ये चीज अटेस्ट की हो गया है ना, कुछ वक्त हो गया है ना. There are a lot of people who have been in touch with it, but there are also a lot of people who have not been. But we all love it, right? जब कोई ऐसा contest होता है और screen पे जो है सवाल होता है and we all are sitting together and answering कि नहीं नहीं नहीं इसका जवाब तो ये होना चाहिए. I think इसका जवाब ये, मैं भी इसमें participate कर सकता हूँ. Yes, doing all that and so much more. आपने अभी कुछ time से जो है सुन रहे होंगे लायन सिटी चैलेंज. लायन सिटी चैलेंज, व्हाट इज लायन सिटी चैलेंज? लायन सिटी चैलेंज इज सिंगापुर्स स्मार्टेस्ट गेम शो जहां पे होती है नॉलेज की जीत. यस, वेयर नॉलेज विंस. एंड यस, मस्ती मीडिया नेटवर्क इज गेटिंग लायन सिटी चैलेंज टू यू. यानी कि अगर आपको लगता है दैट योर यू नो नॉलेज, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, कल्ट अफेयर्स हो, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफ स्टाइल, एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, यू आर where you are updated and you know ye sari cheeze mein aap believe karte ho that you have what it takes to compete in a game show like never before, ye wo waqt hai ki aap apni knowledge ko ek test pe dale. Exciting prizes definitely, jo jeetega wo to kuch na kuch lekar hi jayega, but the concept all in all, jaise jaise ye waqt aage badhta jayega hum aapko batate jayenge, it is absolutely interesting and mind blowing. So if you are interested to participate in this Lion City Challenge, then aapko sirf Lion, L-I-O-N, yes, wo text karna hai 9151-8963 par. Once you text us, हमारी जो टीम है, दे विल गाइड यू थ्रू द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेप्स. बताओ बताओ, तैयार हो कि नहीं हो? कितनी मतलब अगर नहीं भी हो तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप तैयारी करके भी रख सकते हो. बट उससे पहले फटाफट से जो है हमें लिख भेजो दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द लायन सिटी चैलेंज. इट इज गोइंग टू बी वन अमेजिंग अमेजिंग गेम शो. I'm telling you, मैं कभी कोई गलत बात बताती नहीं, और स्पेशली आज तो कोई गलत बात नहीं होगी, सब ऑसम वाली बातें होंगी, है ना. गुड इवनिंग.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: 40% off, 40% joy alukas.
2: 40% off? Oh my god! Let's go!
3: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
5: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning.
9: ट्रैफिक अपडेट.
10: यहाँ पर जो है हमारे योगेश जी जो है वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि फिटनेस का जो है क्या ही कहे कि अगर गाने सुन के फिटनेस बन जाती तो सारे आरजेस कितने फिट हो जाते हैं ना. तो मैं योगेश में तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो बातें करने से भी ये काम हो जाता कि कैलोरीज बर्न हो जाती जितनी ज्यादा आप बातें करते हो, तो मेरे को वो भी चलता. लाइक गाने नहीं भी सुनाओगे तो मेरी बातों से अगर हो जाता तो हाउ इंटरेस्टिंग इट वुड हैव बीन. बट एनीवेज लेट्स कम बैक टू द ट्रैफिक का अपडेट जो मुझे देना है. यहाँ पे 6:28 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, नहीं बातें करते करते 6:29 हो चुके हैं. हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा इस वक्त बीकेई पर टुवर्ड्स वुडलैंड्स एट वुडलैंड्स चेक पॉइंट एग्जिट. व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन AYE टुवर्ड्स MCE आफ्टर यूआरचिंग रोड. एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन मर्चेंट रोड टुवर्ड्स यूआरटन सिंह रोड आफ्टर सेंट्रल एक्सप्रेसवे. सो अवॉइड करें लेन्स 1 and 2. सो ये थे इस घंटे की ट्रैफिक की अपडेट. एंड गाने की अपडेट कुछ ऐसे कहती है कि रंजना मूवी से कमिंग अप नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. इट्स कॉल्ड तुम तक गाना आ रहा है. गुड इवनिंग.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: अगर कभी ऐसा मूड करे वैभव सूर्यवंशी को कि अगर मेरा कोई एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता, मुझे कहना है कि उसको तो जरूरत ही नहीं है. हमारे इंडस्ट्री ने उसको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एकदम ग्रैंड एंट्री जैसा एक बैकग्राउंड स्कोर ऑलरेडी बिल्कुल दे रखा है. यस द वन भाई, अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना सूर्यवंशी, एकदम ऐसा लगता. एंड एवरी टाइम दिस 15-year-old गेट्स डाउन उस क्रिकेट की पिच पे, मेरे को तो यही सुनाई देता है पीछे से कि भाई आ गया, ये तो आज पता नहीं क्या ही होने वाला है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज, जिसमें कोई ब्लूज नहीं है. आज अंतराब के लिए एवरीथिंग इज पर्पल एंड पर्पल एंड पर्पल. बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस वन, वैभव सूर्यवंशी जो है, अब कुछ ऐसा है कि जब आईपीएल में उन्होंने इतनी कमाल की अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, सो एवरीबडी वाज लाइक देयर नाउ. इनफैक्ट हमारे द क्रिकेट कॉर्नर के जो तीन एक्सपर्ट क्रिकेट पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि नाउ द इंडियन क्रिकेट टीम हमारी जो है, जो अभी नेक्स्ट आयरलैंड टूर करने जा रही है, सो दे शुड सीरियसली एंड सिंसियरली थिंक अबाउट टेकिंग दिस किड वहां पर. सो यस, अहेड ऑफ इंडिया का आयरलैंड टूर, सपोर्ट for this young prodigy continues to grow. BCCI ke secretary Devajit Saikia jo hai, he praised Vaibhav ka exceptional talent, calling him a wonder kid and expressing confidence that selectors jo hai, they are going to take the best decision for his future. And with selectors closely tracking IPL performances, all eyes are now on the upcoming squad ka announcement, whether one can find this boy over there. In fact, BCCI इन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया हुआ है अजीत अगरकर को ओवर द टीम सिलेक्शन, एंड कहा गया है कि यस यू हैव टू कंसिडर दिस बॉय. वी ऑल आर सेइंग कंसिडर, भाई ले लो. जहां जाओगे जीत के वापस आओगे. ही हैज डन that guy, he has given us that kind of confidence through his performance every single time. So good on him, kudos to that kid. It's just very, very nice. आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को इंक्लूड किया जाएगा क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम स्क्वाड? लेट्स सी, वी विल फाइंड आउट. एंड किया जाएगा तो हम वापस आकर सेलिब्रेट करेंगे, है ना. फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है एक कमाल का गाना. आई नो 90s वाला शो कल है, लेकिन आपको तो पता ही है वेंसडे को ही फील आने लगती है मुझे.

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी।
2: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
2: क्या जी?
3: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
2: वाजी, क्या बात जी?
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.
4: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज, नो ब्लूज एट ऑल, बिल्कुल वी आर वेरी वेरी राइडिंग हाई, बट नॉट ओनली आई एम राइडिंग हाई ऑन गेटिंग माय कॉन्सर्ट टिकट टुडे फाइनली, बट देन आमिर खान इज ऑल्सो राइडिंग हाई नाउ, ही हैज बीन राइडिंग हाई फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, बट भाई फाइनली वो शुभ घड़ी आने वाली है दोस्तों कि आमिर खान जो है वापस से शादी करने वाले। अब आपका होगी कि एक मिनट, हेलो प्लीज कैन वी जस्ट कैन, क्या क्या बात कर रहे हो? अभी तो यही पता चला था ना कि जो गौरी स्प्राट है उनके साथ उन्होंने कहा कि हाँ वो उनके साथ रिलेशनशिप में है। हाँ तो मैं आगे की कहानी बता रही हूँ ना, तो सुन लो आराम से प्यार से, है ना। So well, he is doing even this entirely on his own terms, right? Source ke mutabik, Bollywood ke kuch vishwasniya sutron se pata chala hai that Aamir and Gauri have been living together as a family. Ab ek saal se thoda sa upar ho gaya hai. They have built a happy, stable life together and simply decided to mark it formally with their families present. Aur reports ki mani jaye to July 5th jo hai, Aamir Khan ke ghar pe ek intimate ceremony mein आमिर खान पूरी दुनिया के सामने जी है सोसाइटी के लिए जो है वो बिल्कुल गौरी स्प्राट से शादी करने वाले हैं वापस से। वी हैव टू पुट दैट लाइक आई मीन आई एम श्योर दैट इवन ही डजंट माइंड बिकॉज अब जो है सच वो है, बट मैं सोचती हूं कि ही इज वन लकी गाय। गाइज, हूएवर, ऑल यू गाइज हु आर ट्यून्ड इन, डोंट यू थिंक सो? आप देख लो, है ना, जितनी भी उनकी बीवियां हैं फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड एंड टू नाउ दिस फोर्थ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल दीज वुमेन हैव नो मतलब हार्श फीलिंग्स और नेगेटिव फीलिंग्स फॉर दिस गाय। दे आर ऑल गुड, इन गुड टर्म्स विद हिम, सारे बच्चे आर इन गुड टर्म्स विद हिम, एंड ही इज इन गुड टर्म विद ऑल द फोर वुमेन, एंड ही इज गोइंग टू मैरी द फोर्थ वन राइट नाउ। ओके, या आई थिंक वी ऑल नो द आंसर। लुट ले गया है ना, अचानक से पता नहीं ये बात करते ही ये गाना आ गया, इसी को प्ले करते हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: पहुंच चुके हैं 7 बजे उस पार रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ. 7 बजकर हो चुके हैं 5 मिनट. मिड वीक ब्लूज किसी को भी नहीं हो रखे हैं. एक तो हफ्ता छोटा है राइट, तो फील ही नहीं आ रही है कि हाँ अब तो बस आ ही गया फ्राइडे. तो ये रहा है ना, थर्सडे को तो हम मान ही नहीं रहे. थर्सडे इज लाइक एकदम ऐसे फुदकते हुए निकल जाएगा एंड देन फिर वापस से फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाएगा. खूबसूरत वेरी वेरी नाइस. सो वेल कमिंग बैक टू भाई खबरों के सिलसिले को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए, भाई हमारी अनुष्का शर्मा अब नाउ वापस से जो है स्पॉटलाइट में जो आ चुकी है. शी गेव सम रीसेंट रिमार्क्स. अब क्या होता है सेलिब्रिटीज जो है वो कुछ बोलते हैं और उसके बाद लोग उसकी बात को और भी ज्यादा आगे लेकर जाते हैं कि ऐसा कैसे बोल दिया, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा. बट बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारा इन पे भी अप्लाई होता है राइट भाई. अब वो भी इंसान ही है भाई, अगर वो किसी चीज में बिलीव करती है तो वो तो बोल ही सकती है राइट. सो हाल ही में उन्होंने अनुष्का शर्मा जो है होम्योपैथी जो है वो दवाइयां और वो द वे होम्योपैथी ट्रीट्स पीपल उस चीज को लेकर उन्होंने बात की एंड शी सेड दैट होम्योपैथी हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ एंड इट हैज स्पार्क्ड काइंड ऑफ अ डिबेट ऑनलाइन. भाई उनके कॉमेंट्स जो है उनको काफी मिक्स्ड रिएक्शन मिले सोशल मीडिया के यूजर्स जो है, कुछ सपोर्ट किया उन्होंने उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को. While others questioned the scientific basis of homeopathic treatments and reigniting kind of discussions on celebrity endorsements and alternative medicine. भाई वो क्या बात भी नहीं कर सकते. मेरा सवाल ये है कि आप उनको जानना चाहते हो लेकिन आप उनको जानना भी नहीं चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन तो टू मच हो गई हमारे लिए, अब हमको प्रोटेस्ट करना है कि आप ऐसे कैसे होम्योपैथी के खिलाफ बोल सकते हैं. देखो मैं तो किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है. मैं ही कह रही हूँ कुछ भी कर लो वो जो मीठी गोलियां होती है ना, इट ऑलवेज मेक्स यू काइंड ऑफ गो बैक टू इट. नहीं कि मुझे तो, मैं तो जब मैं छोटी थी आई यूज टू लव इट. आई वॉज लाइक कि भाई दवाई दो भाई, भूल कैसे सकते हो, यही तो वो दवाई है जो देनी चाहिए. एंड इट यूज टू बी एंड यू नो एवरी थॉट प्रोसेस एंड एवरी थॉट स्कूल ऑफ थॉट्स हैव डिफरेंट थिंग्स टू इट राइट. किसी को किसी चीज पे भरोसा है, किसी को किसी चीज पे भरोसा है. चढ़ मत जाओ किसी पे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. अंतरा फ्राइडे वाला शो अभी शुरू नहीं हुआ है तो फिर हाँ मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करते हुए बढ़ते आगे. भाई रहमान साहब आप हाईवे का ये गाना शुरू करो गाना इससे पहले कि मैं और भी आपे से बाहर हो जाऊँ.

0: Love.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
2: 40% off, 40% joy, Lucas.
3: 40% off? Oh my God! Let's go, let's go!
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
5: Are you ready?
6: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.
4: Take a break, laugh a little. And vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
7: सात बजकर हो चुके हैं 18 मिनट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर गुड इवनिंग. यस, यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. भाई आज सब अपने अपने तरह के जो है वॉर्स को सर्वाइव करते हुए निकले हैं. आई हैव सर्वाइव्ड वन एंड देयर इज समवन हु इज राइट नाउ सर्वाइव्ड वन एंड नाउ वापस जा रहे हैं अपने घर. बट उसी के साथ साथ कभी कभी होता है ना कि आपको ना व्हाट्सएप के टेक्स्ट में इंसान का, बंदे का जो मूड है, जो टोन है, वो समझ में आने लगता है. और मेरी और ये जिनकी मैं बात कर रही हूं, हमारे टेक्स्ट के बीच में मैं आई कैन लिटरली यू नो हियर हर सेइंग इट इन दैट टोन. एंड आई एम यूजुअली नेवर रॉन्ग व्हेन शी मेक्स श्योर दैट आई एम नॉट रॉन्ग इन गेजिंग दैट. सो वेल भाई, उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब कुछ ऐसा, मतलब अपलिफ्टिंग कुछ ऐसा गाना चला दो, तो वो मैं जरूर यहां पर चलाऊंगी. बट उसी के साथ जो है भाई, रणवीर सिंह जो है, डू यू नो दैट ही हैज नाउ सूड द फिल्म बॉडी. दैट्स द लेटेस्ट अपडेट राइट नाउ ऑफ ऑल दिस डॉन 3 का कंट्रोवर्सी विच हैज बीन गोइंग ऑन. दैट्स राइट. देखो क्या हुआ था, डॉन 3 से एग्जिट मारा, ठीक है. उसके बाद जो है फॉइस बीच में आ गया. फिल्म बॉडी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो अच्छा नहीं है, चलेगा नहीं, हम नहीं होने देंगे, हम नॉन कोऑपरेट करेंगे, बैन कर दो उसको, मत करो काम उसके साथ. फिर एक और फिल्म बॉडी इस पूरे के पूरे सिनेरियो में घुसी कि नहीं, तुम्हारे पास तो ऐसी कोई राइट्स है ही नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हम तुम्हारे खिलाफ पिटीशन जारी करेंगे. तो व्हाइल दीज टू फिल्म बॉडीज वर फाइटिंग, फाइनली रणवीर सिंह यहां पे कूदे. पहले तो उन्होंने मांडवली करने की कोशिश की, बट दे वर लाइक द अख्तर सिब्लिंग्स, reports out to be believed, ki mana kar diya. So now he has sued the film body after this ban wala row, and अभी वहीं पे जाके पूरा का पूरा मामला खड़ा होता है. अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7, क्योंकि हर दिन कुछ नया हो रहा है इस पूरे के पूरे केस में. भाई है तो अपना लड़का धुरंधर, है ना, है ना, आफ्टर ऑल ही इज रणवीर सिंह ब्रो, है ना. तो वेल, रणवीर सिंह की बात हो गई, हमारा दूसरा धुरंधर जो ड्राइविंग बैक होम राइट नाउ, उसके लिए ये वाला गाना, बिकॉज दिस गाना हैज मोनिका बट वी हैव रेनुका. बस नाम को रिप्लेस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा एंड उनको भी समझ में आ जाएगा. गो फॉर इट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: पूरी बात जानने की जो चुल होती है जिसको कहते हैं कि वो इतनी ज्यादा है ना मुझ में, इतनी ज्यादा कि मैं क्या बताऊं. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. कुछ ऐसा हुआ कि भाई रेणुका ने कहा कि बुच कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, अच्छा सा कोई गाना चला दे. फिर मैंने वो वाला रन डाउन रेणुका वाला गाना चलाया और करने के बाद ना मैंने तुरंत उनको कॉल कर दिया. गाना चला के मैंने कॉल ही कर दिया उनको क्योंकि मुझे जानना था कि हुआ क्या है. फिर वो कह रही है कि मतलब तूने गाना चलाया क्यों जब तूने मुझे सुनने ही नहीं देना था. बट देन What to do, yeah? You have to know. You have to, ये जो curiosity होती है ना, इसको बिल्कुल satisfy करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना बदहजमी हो जाती है. और वो कोई नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी में भी ऐसा हो, especially एक RJ जो शो कर रहा है उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. Well, उसी के साथ साथ भाई वो बात तो एक तरफ, और जीजी मार्ट जो है उनके आम भी एक तरफ. यस भाई, पहले तो हम सिर्फ बात कर रहे थे कि देवगढ़ के आम, रत्नागिरी के आम. उन्होंने कहा कि ना ना ना ना और क्या, और कुछ चाहिए? बादामी चाहिए, दशहरी चाहिए, लंगड़ा चाहिए, पैरी चाहिए, मलिका चाहिए, केसर चाहिए. तो बोलो हाँ, ऐसे ले जाओ. यस, ही हैज एडेड ऑल दीज वराइटीज टू द आम का. भाई इट इज जस्ट इनसेन. ओके, मेरे को तो सोच सोच के ही जो है ना ऐसे मुंह में पानी आ रहा है. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ट्राइड जीजी मार्ट का आम, सो आई नो कि अगर मैं उधर से दशहरी आम मंगाऊंगी तो और भी कितना अमेजिंग हो जाएगा. माई हेल्थ बेनिफिट्स भी है. तो आजकल जैसे कि आपको पता है कि ऑफकोर्स मैं काफी हेल्दी लाइफ स्टाइल में आ चुकी हूँ, कोशिश पूरी जारी है, लेकिन अब और भी ज्यादा उसमें जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे दिसंबर तक काफी और ज्यादा जो है ना एकदम मस्त हो जाना है. सो वेल, दैट इज द मोटिवेशन ऑफ ऑर्डरिंग आम फ्रॉम जीजी मार्ट ऑनलाइन. मेरे कहने पर आप एक बार ऑर्डर करके जरूर बिल्कुल मंगाएं और उसका लुत्फ उठाएं. फिलहाल लो चाय उल्फत की तरफ जाएं और वापस आएं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
4: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
5: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराव के साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज। भाई कोई ब्लूज नहीं है, नहीं है। अच्छा भाई मैं ये बोल रही थी कि ये जो है बहुत सारा कुछ देखे अलग अलग तरीके की चीजें होती रहती है दुनिया भर में, बट देन दिस वन आई रियली रियली लाइक। सो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज लाइक अ जापान पगलू। लाइक शी इज ऑलरेडी 3-4 बार जा चुकी है जापान, बट उसको इतनी वो जगह पसंद है कि मतलब कभी कभी वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं वहीं जाके बस जाऊँ। लाइक शी इज दैट बिग अ फैन ऑफ दैट प्लेस। सो शी टोल्ड मी अबाउट, वेदर यू नो इट और नॉट, शी टोल्ड मी अबाउट दिस प्लेस इन टोक्यो। ठीक है, टोक्यो में एक ऐसी जगह है एंड इट्स अ मिशलन प्लेस। ओके, वहां पे एक जापानीज शेफ है, मिशलन स्टार शेफ। ओके, एंड वॉट ही मेक्स ओनली बिरयानी। Yes, and I'm not kidding. He specializes, सिर्फ ये तीन तरह की बिरयानी बनाते हैं और सिर्फ बिरयानी बनाते हैं ये जापानीज शेफ, एंड इट इज इनसेन। हिज रेस्टोरेंट इज स्मॉल, एक बार में सिर्फ 12 लोग ही बैठ के वहां पे खा सकते हैं, एंड इट इज क्रेजी। ही हैज स्टडीड बिरयानी फॉर सो मेनी इयर्स एंड आफ्टर कमिंग टू जापान ही ओपन्ड सच प्लेस टोक्यो में। मतलब ये क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स आई मीन व्हेन आई सॉ द वीडियो एंड एवरीथिंग, आई सॉ हांडी इन हिज किचन एंड आई वाज लाइक डेफिनेटली लाइक देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम हियर। यू हैव हांडी, you have biryani, you are making in that, you cannot get wrong. Okay. But also there is this new feature which has started in Japan which is called Uber Drift. That is right, wahan pe kya kar diya gaya hai ki Uber jo company hai, गाड़ी वाले, दे हैव लॉन्च दिस थिंग, दिस एक्साइटिंग थिंग। गाड़ी में ड्रिफ्ट करते हुए देखा होगा ना आप, जब ब्रेक लगाते हो एंड देन पीछे वाली टायर जो है ना वो, अब ड्रिफ्ट दो तीन तरीके की होती है, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। आई ओनली नो अबाउट द टू व्हीलर्स बट आई हैव सीन लोगों का इस कार में करते हुए। यू हैव सीन द मूवी टोक्यो ड्रिफ्ट, गाना देखा हुआ है ना, इट्स ऑल अबाउट द ज्विंग ज्विंग। सो वो एक्सपीरियंस कराने के लिए यू सिट विद द ड्रिफ्टर यानी ड्राइवर एंड he will drift or she will drift and you will sit and experience that kya rush jo hai, adrenaline rush aata hai usko karne mein. It's kind of an adventure thing which they have karne. And I thought that it's kamal, bemisal, I tell you. Good, lag raha hai ki Japan bhi bana hi lena chahiye plan, kya kehte ho, hai na?

जाते जाते लेटेस्ट खबर देके जाऊं कि रेडियो मसी 24/7 लाइव अल्ट्रॉप के साथ एंड यहाँ पर चल रहा था मिडवीक ब्लूज। मैं जाने जरूर वाली हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको रणवीर सिंह का अपडेट दिया था दैट ही हैज सूड द फिल्म बॉडी की, कहते हुए कि भाई क्या चल रहा है ये, मतलब चाहते क्या हो मुझसे। सो वेल भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जहां पे वॉइस के जो है मेंबर्स बैठ के वापस से कुछ बताने वाले थे मीडिया को, और अभी अभी मैं उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख रही थी। उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने जो बैन लगाया था नॉन कोऑपरेशन का, कि प्रोड्यूसर्स हमारे जो इस फिल्म बॉडी के अंतर्गत आते हैं वो रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे इस वक्त, फॉर द टाइम बीइंग वी आर टेकिंग इट बैक, दैट इज राइट। उन्होंने वो नॉन कोऑपरेटिव बैन जो है ना वो हटा दिया है और उन्होंने कहा है कि अब हम वापस से इस पे चर्चा करेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे कि ऐसे किसी निष्कर्ष पे पहुंचे जिससे जो है ना ही प्रोड्यूसर को कोई हानि पहुंचे और हमारे जो एक्टर है उनको भी कोई हानि पहुंचे। हानि तो मतलब मेरे मन में तो यही आया कि कितना चलाओगे, कैसे चलाओगे, कब तक चलेगा ये सब कुछ। सो दैट्स द लेटेस्ट अपडेट ऑन दैट। ऑन दैट नोट भाई, मैं यहां से चाहती हूँ कल 90s वाले शो पे आपसे वापस से मुलाकात होगी, एंड यस तब तक बिल्कुल आप अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करें। मेरा तो टाइम आज दिन ही बन गया है, मैं तो नाच ही रही हूँ, अब जाके थोड़ा सा और नाचूंगी। जिम में बहुत सारा मतलब इतना रश है मेरे अभी बॉडी में कि आज तो बहुत मजा आएगा। मतलब आपने सुना है कभी मुझे कहते हुए कि वर्कआउट करते वक्त मजा आएगा? आज तो बहुत मजा आएगा। मतलब ये होती है खुशी, व्हेन यू हैव दोज हैप्पी हार्मोन्स इनसाइड, यू नो इट कैन मेक यू डू एनीथिंग एंड मेक अ पर्सन लाइक मी से आज तो वर्कआउट करने में बहुत मजा आएगा। और तो अब तो आप मेरे डिसिप्लिन और सिंसियरिटी देख

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो आदाब, नमस्कार, सिंगापुर, कैसे हैं आप? मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूं यादों का कारवां। तो जरा देखें कि आज यादों का कारवां कौन से साल से होकर गुजर रहा है। मैं आपको एक गाने का जिक्र करके बताता हूं, आप बताइएगा कि कौन से साल की बात कर रहा हूं मैं और कौन सी फिल्म का गाना ये।
2: मेरे,
1: बस इतना ही कहूंगा, ख्वाबों में जो आए आप समझ जाएंगे। मेरे ख्वाबों में जो आए, लता जी की आवाज में गाए इस गाने में शॉर्ट्स कट पहनकर बारिश में भीगते हुए डांस करने की स्टाइल ने काजोल की इमेज को बोल्ड इमेज में तब्दील कर दिया था। और ये प्यारा सा गाना था, आप समझ गए कौन सी फिल्म का, डीडीएलजे बोले तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म शोले के बाद सबसे बड़ी हिट फिल्म है इंडस्ट्री की, इसमें कोई दो राय नहीं है। नूतन की भांजी काजोल ने इस फिल्म में जिस तरह से अभिनय किया अपने आप में काबिले तारीफ है। और इस गाने के साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म से एज अ डायरेक्टर डेब्यू करने वाले आदित्य चोपड़ा की ये फिल्म जबरदस्त हिट हो गई थी और इसके गाने लिखे थे महान गीतकार आनंद बख्शी साहब ने। आदित्य चोपड़ा ने आनंद बख्शी साहब से 24 बार अलग अलग लाइंस लिखवाई, तब कहीं जाकर यह गाना 25वीं बार में पूरा लिखा गया, फाइनल हुआ। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, परमीत सेठी और मंदिरा बेदी भी थी। जी हाँ, मंदिरा बेदी, वो जो परमीत सेठी की बहन बनी थी और जिनसे शाहरुख खान की लगभग शादी करवाई दी गई थी। इस फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था जतिन ललित ने। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। अगर एक एक करके मैं इस फिल्म के गानों की बात करूं तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, लता जी और कुमार सानू की आवाज में गाए इस गाने ने धूम मचा दी थी। इस गाने में शाहरुख खान ने लेदर की जो ब्लैक जैकेट पहनी थी उसे उदय चोपड़ा ने कैलिफोर्निया के बेकर्स फील्ड में हार्ले डेविडसन के शोरूम से $400 में खरीदा था। इसके बाद से ये जो ब्लैक जैकेट की डिमांड एक तरह से मार्केट में आ गई थी, ये ट्रेंड बन गया था। ये गाना जिस सरसों के खेत में शूट किया गया था वो लोकेशन गुड़गांव की थी। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में गाया गाना मेहंदी लगा के रखना शादी के माहौल में बजने वाले फेवरेट सॉन्ग्स में से आज भी नंबर 1, 2 और 3 पर है। और वो हो गया है तुझको तो प्यार सजना, ये भी सीधे दिल को छू जाता है। यशराज कैंप के साथ कई फिल्में करने के बावजूद भी शाहरुख खान इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। आदित्य चोपड़ा को शाहरुख के साथ 4 बार मीटिंग करनी पड़ी, तब कहीं जाकर शाहरुख इस फिल्म को करने के लिए तैयार हुए थे। इस फिल्म का वो जो गाना है ना, रुक जाओ दिल दीवाने, इसमें शाहरुख को पियानो बजाते हुए दिखाया गया है, जबकि असल जिंदगी में शाहरुख को पियानो बजाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बल्कि आता ही नहीं है। लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की और जब आप देखेंगे उन्हें तो ऐसा लगता है कि वाकई वही बजा रहे हैं। इस फिल्म का टाइटल भी कई बार बदला गया लेकिन फाइनल हुआ जो दिल को छू गया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और ये किसने दिया आपको मालूम है? किरण खेर ने। तो ये सब कुछ था इस फिल्म के बारे में और बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे गाने हैं। तो आइए सफर को, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप बने रहेगा समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। बस मैं यूं गया और यूं आया।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: ये बंधन तो प्यार का बंधन है, आपका और मेरा ये बंधन है। रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए जहां पर मैं समर कर रहा हूं आपके साथ बातचीत यादों का कारवां लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से और आपको गुजरे जमाने की बेहतरीन फिल्में और उनके नगमों से रूबरू करा रहा हूं, उन यादों से वाकिफ करा रहा हूं जो कहीं खो गई हैं आज की भागती दौड़ती जिंदगी में। तो इन फिल्मों के साथ आपको जो यादें आ रही हैं वो हमसे जरूर शेयर करते रहिएगा। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, राकेश रोशन के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन का था ये गाना। इस गाने को गाया था कुमार सानू ने और उनके साथ उदित नारायण और अलका याग्निक ने। मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये वही वाली फिल्म थी। संगीत दिया था राजेश रोशन ने और गीतकार थे इंदिवर। पुनर्जन्म पर यूं तो कई फिल्में बनी हैं पर पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो सफलता पाई वो अपने आप में कमाल है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इस फिल्म में दो उस जमाने के सुपरस्टार्स काम कर रहे थे एक साथ, आज भी बड़े स्टार हैं वो। सलमान खान और शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ मैं। सलमान और शाहरुख की एक साथ ये पहली फिल्म थी। अच्छा, पहले इस फिल्म का जो टाइटल था ना वो कायनात रखा गया था और शुरू में सनी देओल और अजय देवगन को लेकर इस फिल्म को बनाने का प्लान किया गया था, पर जब अजय देवगन से बात की गई तो अजय ने मना कर दिया। और सबसे मजे की बात ये कि इस फिल्म में सलमान खान वाले रोल के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया गया था। सोचिए कैसे लगता है अजय देवगन। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि बाद में इन दोनों खान की पॉपुलैरिटी की वजह से ये फिल्म बहुत हिट हुई। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गया गाना जाती हूं मैं जल्दी है क्या, इस गाने को जब म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन बना रहे थे तो इसकी धुन से सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। पर जब राकेश रोशन ने इस ट्यून को सुना तो राकेश को लगा कि यार ये ट्यून बहुत बढ़िया है और उन्होंने राजेश जी को, उनके जो छोटे भाई हैं, इंसिस्ट किया कि भैया इस पर वो गाना बनाओ। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ और ये गाना रिलीज हुआ तो बहुत बड़ा सुपरहिट साबित हो गया। मुझे इस गाने में पता क्या याद है, काजोल का मल्टी कलर स्कर्ट, कमाल का था वो। एंड यू वोंट बिलीव कि मार्केट में इस तरह के बहुत सारे स्कर्ट्स आ गए थे उस जमाने में और मैं तो कहता हूँ कि आज भी ये फैशन में हो सकते हैं, मल्टी कलर। ओ लवली, इट वाज लवली। आप यूट्यूब पर देखिएगा इस गाने को, एंजॉय कीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप तो मेरे साथ बने रहिए और मैं इस फिल्म की बातें आपसे करता रहूंगा। अच्छा, जैसे इसके हीरो जो थे करण अर्जुन जो होने वाले थे वो सनी पाजी और अजय देवगन होने वाले थे, उसी तरह से इसकी हीरोइंस भी पहले अलग थी। पहले ये रोल ऑफर किया गया था काजोल वाला जो रोल था जूही चावला को, और ममता कुलकर्णी वाला रोल ऑफर किया गया था करिश्मा कपूर को। पर भैया वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब में सक्सेस होती है उसे ही मिलती है। सक्सेस इनको मिलनी थी, इस कास्ट को मिलनी थी, इन्हें ही मिली। इस फिल्म में दिखाया गया माँ काली का मंदिर जो है वो पुष्कर में स्थित है, क्योंकि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग राजस्थान में हुई है। तभी तो अशोक सर्राफ का उड़ालोग है ना, ठाकुर तू तो गयो, बहुत ही हिट हुआ था। राजेश रोशन को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। चलिए, इतनी सारी बातें इस फिल्म के साथ हो गई, अब कुछ गाने भी सुन लेते हैं, यादों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप सुनते रहेगा समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां।

हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। मुझे तो आप प्यार करते ही हैं, तभी तो एक से बढ़कर एक प्यारे गाने सुनाने के लिए मैं स्टूडियो में आ जाता हूँ, उन खूबसूरत यादों को ताजा करने जो फिल्मों के साथ चिपक कर चली आती है। चलिए इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूँ इसी फिल्म की, जिसका अभी मैंने गाना गाया, हिंट दे दिया मैंने आपको, घुंघराले बाल वाले। और क्यूट सी स्माइल से अपनी पहली फिल्म से लड़कियों के दिलों में जगह बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि वो थे धर्मपाल जी के दूसरे बेटे बॉबी देओल। और ये जो पहली फिल्म है उनकी, बरसात का गाना है, इसी फिल्म से उन्होंने एंट्री की थी इंडस्ट्री में। और इस गाने को गाया था कुमार सानू और अलका जी ने, और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म बरसात ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा अच्छा कलेक्शन किया और इस फिल्म के लिए ट्विंकल खन्ना को और बॉबी देओल दोनों को बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला था। वैसे ये जो फिल्म है राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की है, लेकिन पहले ओरिजिनली वो धर्मपाजी की पहली चॉइस नहीं थे। पहले ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे शेखर कपूर, कुछ सीन्स उन्होंने शूट कर भी लिए थे, पर पता नहीं क्यों शेखर संतुष्ट नहीं थे अपने काम से, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उन्हें इस फिल्म में, तो उन्होंने ये काम बीच में छोड़ दिया और ये फिल्म मिली राजकुमार संतोषी को। मैं सोच रहा हूँ कि अगर शेखर कपूर इस फिल्म को बनाते तो ये फिल्म कैसी बनती, किस अंदाज में बनती, क्योंकि शेखर कपूर की हीरोइन के तौर पर उनकी पहली पसंद थी मॉडल लीजा रे, और लीजा रे को हिंदी नहीं आती थी, जिसकी वजह से इस फिल्म में उन्हें लिया नहीं गया, वरना तो मतलब फिल्म कुछ और बनती। वेल चलिए इस फिल्म के गानों की बात कर ली जाए। इस फिल्म का गाना नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, ये कुमार सानू ने गाया और काफी दिल को छू देने वाला गाना है। जब आप जुदा होते हैं ना अपने प्यार से तो कुछ ऐसी आवाजें निकलती हैं दिल से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गया गाना लव तुझे लव मैं करता हूँ ये बड़ा खूबसूरत लगता था। और इस फिल्म का टाइटल 5 बार बदला गया था, आपको मालूम है, छठी बार जाकर फाइनल हुआ। सबसे पहले इसका टाइटल रखा गया था जान, उसके बाद मेरी जान, फिर जीत, फिर सातवां आसमान भी रखा गया, फिर एक और था सातों जहां, पर फाइनली इसे बरसात नाम से लॉन्च किया गया। इस फिल्म में बॉबी की मां का किरदार निभाने के लिए अनीता राज से भी बात की गई, पर अनीता राज ने मना कर दिया था। तो ये तो थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ बेहतरीन बातें जो शायद आपको नहीं पता हो, और अगर पता भी हो तो कोई बात नहीं, गानों के साथ एंजॉय कर लीजिए ना यादों का कारवां। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, आप अपनी यादें हमसे शेयर करते रहिएगा। स्टे कनेक्टेड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

वेलकम बैक जमर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। तो आज जब यादों की खिड़की खुली है और वहां से जो यादों की परवाही चल पड़ी है, जो अपने साथ लाई है उस दौर की बेहतरीन फिल्में, उनके नगमे और बहुत सारी यादें जो इन गानों और इन फिल्मों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपसे बात करने वाला हूँ राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी एक फिल्म का। आमिर खान थे इसमें टपोरी लुक में। ए पंखा वंखा चलाना। सर एसी इज़ ऑन। अरे तो उसको इधर घुमाना, गर्मी लगती है यार, समझ गए आप। मैं बात कर रहा हूँ उस फिल्म की जिसमें उर्मिला मातोंडकर का पैशनेट डांसर का किरदार है और जैकी श्रॉफ के मस्त अंदाज के साथ यार रहमान का सुपर डुपर हिट म्यूजिक है। यू गॉट इट राइट, रंगीला की मैं बात कर रहा हूँ। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख दिया था। मुझे याद है कि जब ये फिल्म आई थी तो ये फिल्म थिएटर में ऐसे चला करती थी जैसे कोई यूथ फेस्टिवल हो। यंगस्टर्स ही यंगस्टर्स, यूथ ही यूथ, और इतना शोर शराबा होता था शुरू के आधे घंटे में कि आधे डायलॉग तो सुनाई नहीं देते थे। वो भी एक दौर था। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और उर्मिला के लिए तो ये बहुत बड़ी हिट और एस्टेब्लिश कर देने वाली फिल्म साबित हुई। आशा भोसले जी की आवाज में गाया गया गाना तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना बहुत ही क्लासी लगता है, और जब ये गाना मार्केट में आया था तब लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ था कि इस गाने को आशा जी ने गाया है, क्योंकि जिस तरह से ये गाना गाया गया उससे ही लगता है कि ये गाना किसी एकदम यंग एज की सिंगर ने गाया होगा। इस गाने के लिए आशा भोसले को स्पेशल जूरी बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया। इस फिल्म ने उर्मिला मातोंडकर के अभिनय को एक अलग पहचान दी तो राम गोपाल वर्मा की भी इमेज को टॉप डायरेक्टर्स में शामिल करा दिया था। राम गोपाल वर्मा की पहली पसंद वैसे इस फिल्म के लिए थी श्रीदेवी, पर श्रीदेवी ने मना कर दिया तो रामू ने रवीना टंडन को अप्रोच करने की कोशिश की पर रवीना ने भी मना कर दिया। तब उर्मिला को लेकर ये फिल्म बनाई गई और इस फिल्म के तमाम गाने बड़े क्लासी हैं। महबूब साहब ने गाने लिखे थे, हरिहरन और स्वर्णलता की आवाज में गाया गया गाना हाय राम ये क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे, बहुत ही सेंसुअस गाना है। और वहीं उदित नारायण की आवाज में गाया गया गाना क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, एकदम मस्त बिंदास गाना है। अच्छा जैकी श्रॉफ की भी जगह पहले सलमान खान लिए जाने वाले थे लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वहीं आमिर खान के रोल के लिए पहले अनिल कपूर को अप्रोच किया गया था, वहां पर भी बात बनी नहीं। अच्छा इस फिल्म का एक गाना है ना मंगता है क्या, श्वेता शेट्टी और यार रहमान दोनों ने मिलकर गाया है और कमाल का गाया, और उसमें डांस बड़ा जबरदस्त है। गाने एक से बढ़कर एक थे, टपोरी आमिर खान जब वो गाना गाते हैं यारो सुन लो जरा अपना ये कहना, उदित नारायण और चित्रा की आवाज में गाया गया ये गाना बिंदास था, बड़ा हिट हुआ। मनीष मल्होत्रा ने उर्मिला के लिए कपड़े डिजाइन किए और एआर रहमान को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और साथ ही उन्हें आरडी बर्मन फिल्म फेयर फॉर द न्यू म्यूजिक टैलेंट अवार्ड भी दिया गया था। और जीता जैकी श्रॉफ ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड इसी फिल्म के लिए। कहते हैं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने टपोरी का लुक अपने अंदर उतारने के लिए, वो जो कैरेक्टर था उसके अंदर घुसने के लिए कई दिन टपोरियों के साथ गुजारे थे। भाई उनका तो कहने क्या, परफेक्शनिस्ट हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो इन गानों को सुना सकते हैं आपको और इनसे जुड़ी यादों को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। करते रहिएगा यादों का कारवां है, ये मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: Tushahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi signature veg and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
5: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

तो थी माधुरी की वजह से हिट, लेकिन होता है ना ऐसा, होता है कई बार होता है कि कुछ लोगों के नसीब में हिट्स होती हैं, बाद में वो सक्सेस उनके नाम हो या ना हो। भाई जैसे ग्रेसी सिंह है, कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लगान, लेकिन लगान किसके नाम से जानी जाती है, आमिर खान के नाम से। मुन्ना भाई MBBS किसके नाम से जानी जाती है, संजय दत्त। तो यूं संजय कपूर को भी ये हिट मिल गई माधुरी दीक्षित की वजह से। वैसे इस फिल्म में परेश रावल का बड़ा कमाल का काम था, और ये जो गाना था ना, आंखियां मिलाऊं कभी आंखियां चुराऊं, इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। और जिस तरह से माधुरी ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर 4x4 जीप पर डांस किया था, वो कमाल था। इंद्र कुमार की पहली चॉइस परेश रावल वाले रोल के लिए नाना पाटेकर थे, और उन्होंने उन्हें साइन भी कर लिया था, शूटिंग करना शुरू भी कर दिया था। पर नाना पाटेकर जब डायरेक्शन में दखलंदाजी करने लगे तो इंद्र कुमार ने उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि परेश रावल वाला किरदार शाहरुख खान निभाना चाहते थे। बहुत कमाल का था ये रोल। मैंने कहा ना, अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो ये रोल हमेशा याद रखेंगे, परेश रावल वाला। इसी फिल्म का एक और गाना था, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। उदित नारायण और अलका याग्निक ने इसे गाया और सरोज खान ने इसे कोरियोग्राफ किया। पर डायरेक्टर इंद्र कुमार को सरोज खान की कोरियोग्राफी पसंद नहीं आई, और इसलिए उन्होंने अहमद खान को, जो उन्हीं के शिष्य हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उन्हें बाकी के गानों के लिए कोरियोग्राफी के लिए अपॉइंट कर लिया था। नजरें मिली दिल धड़का जो टाइटल ट्रैक है, लव यू राजा, वो भी बड़ा मस्त है। इंद्र कुमार ने पहले इस फिल्म को तब्बू के साथ करने का प्लान किया था, पर बाद में उन्होंने मूड चेंज किया और माधुरी को लेकर ये फिल्म बनाई। जबरदस्त हिट फिल्म थी। माधुरी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड इसी फिल्म के लिए। तो फिलहाल इस फिल्म से जुड़ी यादें आप ताजा कीजिएगा, मैंने इस फिल्म से जुड़ी बातें आपसे शेयर कर ली हैं। रेडियो मधुबनी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां जारी है, सुनते रहिए।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: लिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: आया हूँ यारो दिल अपना देखे। नमस्कार, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर यादों का कारवां। मैं अपना दिल कहीं देकर नहीं आया हूँ, मेरा दिल तो आपके पास है। बस मैं तो सिर्फ इस गाने का और इस फिल्म का जिक्र करने वाला हूँ। कौन सा था ये गाना, कौन सी

ये फिल्म आप जरा गैस कीजिए, मैं कुछ और हिंट देता हूँ आपको। अनु मलिक के संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे हुए बोलों से सजा उदित नारायण की आवाज में गाया गया था ये गाना, ये आज भी महफिल में रंग जमा देता है। इस गाने में आमिर खान है और एक रॉक स्टार वाले लुक में, बताइए कौन सी फिल्म है ये। जिन्होंने गैस कर लिया है उनका जवाब सही है या नहीं ये जान लीजिए। मंसूर खान के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म अकेले हम अकेले तुम, उसी फिल्म का ही गाना। इस फिल्म में आमिर खान को लेने से पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, पर शाहरुख खान ने जब लव स्टोरी सुनी तो कहा कि यार ये फिल्म हद से ज्यादा इमोशनल फिल्म है और मैं एक रोमांटिक हीरो हूं तो मेरे ऊपर ये रोल सूट नहीं करेगा। इस फिल्म का गाना राजा को रानी से प्यार हो गया उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाया गया था, और इस फिल्म में मनीषा कोइराला वाले किरदार के लिए पहले माधुरी से बात की गई थी, पर माधुरी के पास डेट्स की प्रॉब्लम होने की वजह से मनीषा कोइराला को साइन किया गया। यह फिल्म बॉलीवुड की फिल्म क्रेमर वर्सेस क्रेमर का रीमेक थी। द थीम ऑफ ट्रैक राजा को रानी से प्यार हो गया इज अ कॉपी फ्रॉम हॉलीवुड क्लासिक ट्रैक गॉडफादर। इस गाने के बोल को लेकर मजरूह सुल्तानपुरी साहब और अनु मलिक में थोड़ी बहस हो गई थी, गर्मा गर्मी हो गई थी। मजरूह साहब इस गाने के बोल से खुश नहीं थे, वहीं अनु मलिक और कुमार सानू की आवाज में गाया गया गाना दिल मेरा चुराया क्यों भी ये सुनने पर अच्छा लगता है। फिलहाल आप कौन सा सुनेंगे बताइए, आपको कौन सा अच्छा लगता है? चलिए मैं थोड़ा सा शफलिंग कर लेता हूँ, अक्कड़ बक्कड़ कर लेता हूँ और ये वाला गाना ये सुनते हैं है? और इस दौर के कुछ और गानों के साथ अपनी यादें ताजा कीजिए और मुझे अपनी यादों से अवगत कराते रहिए। कहां कराएंगे? हमारे फेसबुक पेज पर आकर। मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। बस मैं यूं गया और यूं आया। अगली बार कौन सी फिल्म का जिक्र करने वाला हूं बताऊंगा, जिगर थाम कर बैठे रहिएगा।

यादों का कारवां गुजर रहा है 1996 के ईयर से। अब की फिल्में, उनके गाने और बहुत सारी यादों के साथ इस सफर को बढ़ा रहा है समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। बाहों के दरमियां, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और जतिन ललित के संगीत से सजा है गाना। हरिहरन और अलका याग्निक ने इसे गाया और यही वो गाना है जिसकी फिल्म का हम जिक्र करने वाले हैं, खामोशी द म्यूजिकल। उसी फिल्म से लिया गया गाना जिसे डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। क्या आपको बताया कि संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म से एज ए डायरेक्टर डेब्यू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन शायद ठीक है कह सकते हैं इसी फिल्म से। हालांकि 1942 लव स्टोरी में एक गाना वो कर चुके थे डायरेक्ट, कुछ ना कहो, लेकिन पहली बार पूरी फिल्म तो यही डायरेक्ट की थी उन्होंने। संजय लीला भंसाली ने सोच रखा था कि जब भी वो डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे तो माधुरी दीक्षित के साथ काम करेंगे, पर जब माधुरी से बात की गई तो माधुरी ने मना कर दिया, इसलिए मनीषा कोइराला को लेकर ये फिल्म बनाई गई। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि संजय करीना कपूर को लीड रोल के लिए लेना चाहते थे, पर उस वक्त तक करीना ने एक्टिंग फील्ड में कदम नहीं रखा था, इसलिए करीना ने भी मना कर दिया। चलिए इस फिल्म के गानों की बात कर लेते हैं। कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में गाया गया गाना आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज भी बहुत हिट है गाना। जब भी आप ओवर एक्साइटेड होते हैं, थ्रिल्ड होते हैं, तो आप अपने आप ही गाना गुनगुनाने लग जाते हैं। इस गाने के लिए कविता कृष्णमूर्ति को बेस्ट फीमेल का स्पेशल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म में सलमान खान, हेलेन, नाना पाटेकर और सीमा बिस्मास के साथ मनीषा कोइराला ने एक्ट किया था। ये पहली और शायद आखिरी फिल्म है जिसमें नाना पाटेकर और हेलेन एक साथ काम कर रहे थे। नाना पाटेकर, सलमान और मनीषा कोइराला की भी ये पहली मूवी थी, तो बहुत सारी चीजें पहली बार हुई थी इस फिल्म के साथ। आपकी जिंदगी में इस फिल्म के साथ कौन से सेंटीमेंट्स, कौन सी घटनाएं, कौन से इवेंट्स जुड़े हैं हमें जरूर बताइएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव के हमारे फेसबुक पेज बनाकर। फिलहाल इन गानों के साथ, खामोशी द म्यूजिकल के और उस दौर के गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आप सुनते रहेगा समर के साथ सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव।

नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम कौन सी गलियां छोड़कर आए हैं हमें पता नहीं, लेकिन हम सिंगापुर में है रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए बातें कर रहे हैं। यादों का कारवां है ये। वेल, फिलहाल जब मैंने ये गाना गुनगुनाया है तो इसी फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ। ये फिल्म माचिस का गाना, छोड़ आए हम वो गलियां। हरिहरन, सुरेश वाडकर, केके और विनोद सहगल की आवाज में गाए इस गाने ने धूम मचा दी थी। और आज भी ये गाना बहुत सारी यादों को एक तरह से एक पोटली में बांध कर ले आता है। उस दौर की वो तमाम यादें हैं जब ये फिल्म देखी गई थी, सामने आके खड़ी हो जाती है, बहुत सारी बातें करती है। और भी इस फिल्म के तमाम गाने बहुत ही कमाल के थे। गुलजार साहब ने ये फिल्म बनाई थी, गुलजार के लिखे हुए बोल थे और विशाल भारद्वाज का शानदार संगीत था माचिस में। और इस गाने से ही इंडस्ट्री के फेमस सिंगर केके ने अपनी पारी की शुरुआत की थी एज अ प्लेबैक सिंगर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कैसे कोई इंसान किसी को देखकर कुछ और करने की चाहत रखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है गुलजार साहब। महान गीतकार, लेखक और डायरेक्टर गुलजार साहब को देखकर विशाल भारद्वाज, जो उन्हें असिस्ट किया करते थे, इस फिल्म में संगीत देने के साथ साथ उनमें एज अ डायरेक्टर खुद को प्रूव करने की ख्वाहिश जागी। और इस फिल्म के बाद ही विशाल ने फिल्म डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया और एक से बढ़कर एक हिट फिल्म्स मकबूल, हैदर, ओमकारा जैसी फिल्में डायरेक्ट की। इस फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह, जिमी शेरगिल, तब्बू और ओम पुरी ने मेन कैरेक्टर्स निभाए थे और साथ में सुनील सिन्हा भी थे। उन्हें कैसे बोल सकते हैं, जो दाढ़ी वाले थे ना, सुनील सिन्हा। गुलजार साहब ने चंद्रचूड़ सिंह वाले रोल के लिए पहले जैकी श्रॉफ से बात की थी, पर जैकी ने मना कर दिया क्योंकि जैकी को लग रहा था कि उनको प्राइज कम दी जा रही है, उनका मेहनताना जो है वो काफी कम है। दूसरा, वो ग्रहण मूवी की शूटिंग में बिजी थे उस वक्त। ग्रहण नाम से एक फिल्म आई थी, पर मुझे लगता है कि उस ग्रहण को तो ग्रहण लग गया, इस माचिस ने जला दिया उसको। बहुत ही कमाल की थी ये फिल्म। वैसे आपको क्या लगता है कि जैकी उतनी दमदार परफॉर्मेंस दे पाते जितनी चंद्रचूड़ सिंह ने दी थी? मुझे लगता है उससे ज्यादा बेहतर कर पाते। चलिए अब इस फिल्म के बाकी के गानों की भी बात कर ली जाए। पानी पानी रे, लता जी की आवाज में गाया गया गाना, उफ कमाल का था। और वो गाना जिसका मैं जिक्र करने वाला था, चप्पा चप्पा चरखा चले। हरिहरन, सुरेश वाडकर ने जिस अंदाज में गाना गाया है, यादें ही उनकी जो आ रही है इस गाने में। बहुत ही कमाल का गाना है, बहुत कमाल का गाना। बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है इस गाने में, जब भी गौर से सुनेंगे तो आंखें डबडबा आती हैं। कहां छोड़ा है वो गलियां, कहां रह गए वो चरखे, पता नहीं। लेकिन सिंगापुर में अभी हम रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है समर। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपकी यादों को मैं सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर लिखिएगा। माचिस की बात कर रहा हूं मैं। इन गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ा लेते हैं। स्टे कनेक्टेड।

भैया हम है सीधे साधे समर, समर नाम हमारा है यही, आते हैं हम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर यादों का कारवां। वेलकम है एक बार फिर से आपका स्वागत। तू कौन है, तेरा नाम क्या है? कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में गाना था ना हम है सीधे साधे, अक्षय अक्षय खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म से, जिसे अनु मलिक ने कंपोज किया था और ये गाना था उमेश मेहरा के डायरेक्शन में बनी फिल्म जिसका नाम अभी मैंने लिया खिलाड़ियों का खिलाड़ी से। ये मूवी खिलाड़ी वर्ल्ड सीरीज की फोर्थ फिल्म थी। अक्षय कुमार, रेखा, रवीना टंडन ने इसमें कमाल की एक्टिंग की थी और खास तौर से रेखा और अक्षय कुमार का एक तो जबरदस्त गाना है ना, उसकी भी बात करेंगे। इस मूवी की शूटिंग के दौरान अक्षय और रेखा के बीच रोमांस शुरू हो गया था ऐसा कहा जाता है। मैं बता रहा हूँ जिस गाने का जिक्र मैं करने वाला हूँ। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि अक्षय और रेखा शादी कर लेंगे। इस फिल्म के लिए रेखा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। इस मूवी में रेखा और अक्षय के बीच फिल्माया गया गाना जिसका मैं जिक्र कर रहा था मड सीन था, उसमें दोनों कीचड़ में सने हुए, कीचड़ मतलब मिट्टी का कीचड़ है, मड है, और इस फिल्म का वो सबसे हॉट सीन कहलाता है। इस स्टीमी गाने को देखकर डिंपल कपाड़िया ने बड़ी खुशी जाहिर की थी क्योंकि पहले रेखा वाला रोल डिंपल कपाड़िया को ऑफर किया गया था और बाद में कुछ सालों में डिंपल अक्षय की सासुमा बन गई। अक्षय की वाइफ ट्विंकल खन्ना डिंपल कपाड़िया की तो बेटी है। फिल्म में सोनू निगम की आवाज में गाया गया गाना माँ शेरावाली बहुत हिट हुआ और आज भी नवरात्रि के दिनों में ये गाना हर पंडाल में बजता है। अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाया गया गाना इतना मुझे पता है भी काफी अच्छा गाना था। मैंने उस गाने का जिक्र तो किया लेकिन उसके बोल आपको पता है नहीं। इन द नाइट नो कंट्रोल क्या करूं कुछ तो बोल, सुमित्रा अय्यर की आवाज में गाना था, बड़ा एसेंशियल गाना। चलिए आपको कौन सा सुनना है मैं सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं, इस फिल्म में पहली बार उस जमाने के WWF के रेसलर्स दिखाए गए थे, स्पेशली अंडरटेकर। आप कौन सा वाला गाना सुनना चाहेंगे इस फिल्म का बताइए बताइए, मुझे फिर से अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये वाला गाना आपको सुना दो भाई, कंप्यूटर भाई सुना दो, सुनते रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवां समर के साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। अब एक आपसे ऐसा सवाल करने वाला हूँ जो माइंड मत कीजिएगा, लेकिन अब सब बड़े हैं, बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इस बात को सुनने से। नहीं सुन सकते, अच्छा सॉरी, आप सिंगापुर में, मैं भूल गया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे लंबा किस सीन किसके नाम है आपको पता है? कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूं मैं आपका, बस जानना चाहता हूं। मैंने सोचा कि आपको बता ही दूं, अब मन में आया तो एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैं अब जिस फिल्म का जिक्र करने वाला हूं ना, वो यही फिल्म है। परदेसी जाना नहीं वाली, अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी की आवाज में गाया गया ये गाना था, फिल्म राजा हिंदुस्तानी का। धर्मेश दर्शन के डायरेक्शन में बनी थी फिल्म राजा हिंदुस्तानी। इसमें आमिर खान थे, करिश्मा कपूर थी, सुरेश ओबेरॉय और जॉनी लीवर थे, साथ ही कुणाल खेमू ने भी काम किया था। और जॉनी लीवर को कैसे भूल सकते हैं। और इस फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर के बीच फिल्म इंडस्ट्री का सबसे लंबा किस सीन फिल्म आया गया था। नदीम श्रवण का संगीत, समीर के लिखे हुए गानों से सजी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हो गई थी। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गाया गया गाना पूछो जरा पूछो, और वो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, अलका और उदित नारायण की आवाज में गाया गया गाना, एक से बढ़कर एक गाने थे इस फिल्म के। ये फिल्म थी जब जब फूल खिले का रीमेक। वहीं कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, दिस सॉन्ग वॉज सैंपल्ड सॉन्ग फ्रॉम द सॉन्ग किन्ना सोना फ्रॉम द एल्बम मैजिकल टच, संग बाय ओरिजिनली संग बाय नुसरत फतेह अली खान साहब। आमिर खान पर हर सीन को परफेक्शन के साथ देने की धुन सवार रहती है, इसको तो हर कोई जानता है। इसलिए इस फिल्म के एक सीन में उन्हें ड्रंक दिखना था, और इस सीन में परफेक्शन लाने के लिए आमिर खान ने एक पूरी बॉटल वोडका पी ली थी। और सबसे मजेदार बात यह कि लगातार 8 बार बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट होने पर भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला था, पर इस फिल्म के लिए आमिर खान को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सिर्फ आमिर खान को ही नहीं बल्कि करिश्मा कपूर को भी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला इस फिल्म के लिए, और नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। तो फिलहाल इस फिल्म के बेहतरीन गानों के साथ आपसे लूंगा अलविदा, कुछ और बेहतरीन किस्से और कहानियां लेकर एंड ऑफ कोर्स गाने लेकर लौटूंगा बहुत जल्द। आप सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे, बाय बाय, नमस्कार।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
3: रात अकेली है
1: तो क्या हम तो

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर, मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: पेट्रोल ते पवाए नी।
1: कोई गल नी, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: अच्छी नाचती है। लड़की भी अच्छी है। नाचने के बाद क्या करेगी?
1: वो तो तभी मालूम होगा जब वो मेरे साथ जाएगी।
0: तेरे साथ जाएगी कि मेरे साथ जाएगी?
1: हुजूर वो मेरे साथ जाएगी।
0: झगड़ा मत करो, हेड और टेल करो।
1: छोड़ो यार, हेड तुम रखो, बाकी मैं रख लूंगा।

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है
2: जोश में रहो रंग रेजा

0: won't break my heart.
1: X amount of respect due to you.
2: रात बाकी,
3: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।
4: जोश में रहो।
5: क्या बात है सेठ, सुबह सवेरे गेटवे ऑफ इंडिया पर बोट की सैर करने बुलाया है क्या?
6: हमारे असूल कुछ ज्यादा ही अलग है नानू भाई। हम सड़क के चौराहे पर खड़े होकर बिजनेस नहीं करते, आराम से आमने सामने बैठकर करते हैं।
5: अभी पता चला सेठ कि आपको लोग समंदर का बेताज बादशाह क्यों बोलते हैं। चलो धंधे की बात करो सेठ।
6: आदमी समझदार हो।
5: समझदार न होता तो सुपारी का धंधा थोड़े ही करता सेठ।
6: सुपारी?
5: और ये सुपारी वो सुपारी नहीं है जो पान के साथ खाई जाती है। अपनी सुपारी तो किसी की जिंदगी की बैटरी डाउन करने का एडवांस होता है।
6: क्या गारंटी है कि काम हो जाएगा?
5: खून के बाजार में नानू के नाम की गारंटी है सेठ।
6: शेर का शिकार करोगे?
5: शेर का?
6: कानून के जंगल का शेर एक पुलिस इंस्पेक्टर।
5: इंस्पेक्टर गधा है या बेवकूफ?

0: लोमड़ी की चालाक
1: हड्डी हजम नहीं हुई नहीं है
0: हड्डी नहीं ताता हड्डी डालने वालों के हाथ काट लेता है।
1: कितने फूल का इंस्पेक्टर है?
0: 3 स्टार हैं उसके।
1: एक फूल का नानू 1 लाख लेता है, 3 लाख।
0: ठीक है, ये रहा एडवांस। नानू भाई, ये वो सुपारी नहीं जो पाक के खाई जाती, ये सुपारी केदार का दिया हुआ एडवांस है। जिसको गलत चबाने से टूट भी।
1: इंस्पेक्टर का इलाका
0: डोगरी।

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: आज जाने

बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: जाने वो कैसे लोग थे जिनकी

0: इनकी शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: ये मेरी फीड पर बच्चे ही बच्चे क्यों नजर आ रहे हैं? कोई डांस कर रहा है, कोई स्केटिंग कर रहा है, कोई पियानो प्ले कर रहा है, कोई वॉयलिन प्ले कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है। ओहो हो हो, पूरी दुनिया में समर वेकेशंस का माहौल है। सो हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और जब मैं घर पे वीडियो कॉल लगाती हूँ और अपनी नीस से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, तो मुझे सच में लगता है कि हाय हाय, बच्चों के स्कूल्स में तो एक एक महीने की समर वेकेशंस हो जाती हैं, हम लोगों की नौकरी में समर वेकेशंस क्यों नहीं होती? होनी चाहिए। काश पेड समर वेकेशंस हमें भी मिल जाती। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर ऑन दिस थॉट आ चुकी है और बहुत सारी बातें जो आपको पता ही होनी चाहिए, हैव टू बॉलीवुड की लिस्ट में होनी चाहिए, आपको बताती हूँ। और मैं ना आज एक बहुत ही अच्छी सी चॉकलेट लेकर आई हूँ। जब तक आप गाने सुनेंगे ना, तब तक वो चॉकलेट मैं धीरे धीरे खाती रहूंगी, मजा आ जाएगा। तो मीठी बातें आप तक पहुंचने वाली है, राइट? चलिए चलिए, आज नुपुर दिस साइड।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, ये डायलॉग मस्ट बी पुराना, लेकिन आजकल ये मन में आ रहा है रणवीर सिंह के। अरे अरे अरे, आप जानते नहीं है जितनी ऊंचाई पे इंसान होता है ना उतना उसके मन में गिरने का डर रहता है। सो डेफिनेटली आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड अपने जो फरहान अख्तर है डॉन मूवी के तीसरे पार्ट में अचानक से रणवीर सिंह के जाने से खफा हो चुके हैं, मतलब बड़े सारे उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए गए। रणवीर सिंह को ऐसे नहीं जाना चाहिए था ये भी बोला गया, अच्छा खासा फाइनेंशियल स्ट्रगल दिखा दिया गया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये जो फिल्म ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसने रणवीर सिंह को ब्लॉक कर दिया है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स या क्रू मेंबर्स उनके साथ काम करने के लिए अलाउ नहीं है। तो अब इसके साथ साथ कुछ कुछ सेलेब्स जो हैं वो रणवीर सिंह की तरफ से गुहार भी लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मीका सिंह भी निकल कर आए हैं उनमें से, जो रणवीर सिंह के लिए डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे और कहेंगे कि भाई इतना अच्छा लड़का है, डाउन टू अर्थ लड़का है, उसके संग ऐसे मत करो, हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं, एक्सट्रीमली मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बातें निकल कर आ रही हैं। लेट्स सी क्या होता है आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दूं बच्चे मर जाओ।

सुन टका टक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? Recently, India में Food Safety and Standards Authority of India एकदम एक्टिवेट हो गई है. Right? Each and every grocery का double cross verification चल रहा है. होता है. साल में एक बार ऐसा एक्सट्रीम होता है. लेकिन आपके लिए बार बार वेरीफाई करके टॉप नॉच क्वालिटी के जो ग्रोसरीज अपने पास स्टॉक में रखते हैं वो है ggmartonline.com. आपको बेस्ट ऑफर्स वहां पे मिलेंगे. एंड सबसे वो कहते हैं ना एकदम प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक कैटेगरी भी आपको इनके प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी. और भाई इंडिया से इम्पोर्टेड अल्फांसो, देवगढ़ और रत्नागिरी के जो मैंगोज हैं वो भी आपको मिलेंगे. तो किस बात की चिंता कर रहे हो, और वो भी बिना किसी हार्श केमिकल्स वाले. तो इसके लिए आप विजिट कीजिए ggmartonline.com. और जब अपने कार्ट से चेकआउट करना ना तो उसमें एक डिस्काउंट कूपन भी आप लगा सकते हैं. कैपिटल लेटर में लिखिएगा NEW10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट भी मिले. आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी.
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning!
7: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
8: अरे अरे अरे अरे अरे अरे ये मैंने क्या देख लिया, मतलब इतना सच देखना था क्या मुझे? आज मेरी लिस्ट में था नहीं, बट ठीक है मैंने देख लिया। सो हेलो हाय, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अच्छा आप महंगे महंगे जो सेलफोन्स खरीद रहे हैं वो उनके कैमरे की वजह से खरीद रहे हैं, स्टोरेज की वजह से खरीद रहे हैं और दो चार और फीचर होंगे जिसकी वजह से आप इतना लंबा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बट आप थोड़ा वाइजली माइंडफुली यूज करते होंगे ना। लेकिन दुनिया में लोग ऐसे नहीं है भाई, इन्हीं चीजों को वेपन बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है और अभी इंडिया का एक वीडियो निकल कर आ रहा है जिसमें जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल अगल बगल चिपके चिपके चिपके चिपके अपार्टमेंट्स, एक खिड़की से दूसरी खिड़की का डिस्टेंस बालकनी की तरफ से ज्यादा होता नहीं है, तो उसमें एक अच्छी खासी उम्र के अंकल जी जो है ना वो बगल वाले अपार्टमेंट की खिड़की पे हल्का सा लटक कर वीडियो बना रहे हैं अंदर क्या चल रहा है। मतलब इसके बाद जो प्राइवेसी कंसर्न निकल कर आया है और कमेंट सेक्शन जिस हिसाब से भर गया है ना, उससे पता चल रहा है कि आज भी लोग थोड़े समझदार हैं जो इन चीजों के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। राइट, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के मन में ख्याल कैसे आ जाता है, मुझे तो ये ख्याल नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मैं तो कभी गलती से भी किसी के साथ फोटो ले लेती हूँ ना, मैं उससे परमिशन लेती हूँ कि क्या मैं आपके साथ अपलोड कर सकती हूँ। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।